तो मेगा हर्ट्स पर ये तुम्हा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, मैं आ तुम्हा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कने। तुम्हा सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारी इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।
2: सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार झूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
5: बढ़िया।
4: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
6: कितना टाइम?
4: अरे पूरे 2 घंटे।
6: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
7: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
6: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
4: डॉक्टर।
7: डॉक्टर?
4: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
6: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
7: वो किसी को भी हो सकता
6: हाँ,
7: है।
6: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
4: चलो
6: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अरे ले आओ यार नाश्ता।
8: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
9: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
8: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
4: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
8: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
9: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
8: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: देखो
1: अरे रंग लगाया,
0: इसके बाल तो देखो
1: अरे झूठे मोटे,
0: इसके दांत तो देखो।

0: बताऊं।
1: अरे नाजी नाजी नाजी
0: कर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुस्वा नहीं करते मियां जुम्मन, तैयबली प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का दुश्मन, हाय हाय।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: हटो हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को क्या।
0: आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना।

200 नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान

0: का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
6: अरे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
7: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुबह के 9 बज गए हैं, यानी कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय अब शुरू हो गया है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज के दिन की शुरुआत आपकी थोड़ी सी ठंडी और थोड़े से काम के साथ हुई होगी। श्रोताओं, क्यों वो आगे बात ज़रूर करेंगे। खैर, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस अंक में, 2 घंटे के सफ़र में, हम आपके साथ करने वाले हैं बहुत सारी ज़रूरी बातें और बहुत सारी जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही श्रोताओं, गीतों को तो हम भूल नहीं सकते, गीत भी हम लेकर आए हैं और कार्यक्रम को आज ज़रूर सजाएंगे, संवारेंगे इन प्यारे से गीतों के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं प्यारे से विचार के साथ। इस दुनिया में श्रोताओं, सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। बिल्कुल इसी विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है और अब देर है तो सिर्फ और सिर्फ गीत की। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के पहले प्यारे से गीत के साथ। सोनी महिवाल, श्रोताओं अपने समय की बहुत ही प्रसिद्ध ये फिल्म रही है और इस स्टोरी को हम कभी भी नहीं भूलते हैं। इसी फिल्म का गीत सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम में सुनवाएंगे शबीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अभी आप सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं, इस गीत ने कहीं ना कहीं सोहनी महिवाल फिल्म की याद दिला दी, उस प्रेम कहानी को हमारे समक्ष रख दिया एकदम से आँखों के आगे, वो पिक्चर जो है वो आ गई। श्रोताओं, मिट्टी के बर्तन जो है बना करते थे, और पुराने समय में हम लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करा करते थे, और आजकल भी हम लोग करते हैं, लेकिन बस एक घड़ा जो है वो हर घर में आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अब लोग जो है वो बदलने लगे हैं और मिट्टी के साथ फिर से जुड़ने लगे हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो है अब फिर से हमारे किचन में नज़र आने लगे हैं। श्रोताओं, सोहनी महिवाल फिल्म भी ऐसी ही थी। महिवाल जो है वो सोहनी से प्यार करता था और उससे मिलने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने सीखने के लिए आया करता था, और उस समय में नदी के दूसरी साइड जाने के लिए वो घड़े का इस्तेमाल करते थे। घड़े पर तैर कर वो एक दूसरे से मिलते थे, और जब उनकी कहानी का पता चला तब उनके जो घड़े थे वो बदल दिए गए, कच्ची मिट्टी के घड़े रख दिए गए, और जिससे कि उनकी मौत हो गई। इस तरह की फिल्म थी खैर, और उस समय की प्रेम कहानियाँ श्रोताओं सच में बहुत अच्छी होती थी, और सही में प्यार प्यार होता था। खैर, हम बात को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन गीत चल रहा था तो ये बात आपसे हमने शेयर कर दी। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय है आपको मौसम की जानकारी देने का। साथी श्रोताओं, आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले हमीरपुर के सभी श्रोताओं को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और ज़रूर इस बरसात का आनंद भी ले रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आज आप लोग थोड़े से सतर्क भी होंगे। जैसा कि श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि आज सुबह ही आप लोग थोड़े से सतर्क हो गए होंगे, काम में पड़ गए होंगे। वो इसलिए कहा था क्योंकि पिछली शाम से जो रात भर बारिश हुई है, उसके बाद सुबह उठकर मैक्सिमम लोगों ने अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाए और देखा कहाँ पे कौन सी नाली ब्लॉक है, कहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, उसे निकाला जाए और कोई भी ऐसी दुर्घटना या घटना ना हो। इसलिए हमने यही कहा कि आज सुबह आप थोड़े से सतर्क ज़रूर हुए होंगे और आपने मुआयना हर जगह का किया होगा। तो मौसम की बात कर रहे हैं श्रोताओं, धर्मशाला की अगर बात करें तो कल शाम से बारिश का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है, और रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हल्की फुल्की बारिश आज सारा दिन रहने वाली है, और धर्मशाला की तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। हवा में नमी की बात करें तो 97% हवा में नमी बनी हुई है। तो श्रोताओं, मौसम की जानकारी आपको दे रहे हैं, और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि मौसम की ये पहली भारी बारिश थी जिसने कि हमें थोड़ा सा सतर्क कर दिया है, थोड़ा सा सोचने पर विवश कर दिया है कि अपने जो आसपास की नदी हैं, नाले हैं या कुल्ले हैं, उन्हें आप जांच लीजिए। जहां भी कूड़ा कचरा फंसा हुआ है उसे निकाल दीजिए, ताकि पानी को आप उसका रास्ता सही से मिल सके और किसी का कोई भी नुकसान ना हो। तो श्रोताओं, मौसम की इस बातचीत के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और आपको लिए चलना है एक और प्यारे से गीत की ओर। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म का गीत श्रोताओं आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

हमने आपको सुनवाया ये गीत, और ऐसे ही बहुत सारे गीत कार्यक्रम में आज आपको सुनाए जाएंगे श्रोताओं, इसलिए बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में अब समय होने जा रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो आपको लिए चलेंगे शिमला की ओर, समाचारों की ओर, और बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, आप सभी इसी तरह से बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं व प्रचार तक सीमित, एचआरटीसी की खस्ता हालात से बेखबर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को जारी होगी पेमेंट। और प्रदेश में आज से मॉनसून फिर सक्रिय, 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कजाकिस्तान के एक्सपोजर विजिट पर गए आईटीआई प्रशिक्षुओं से दूरभाष पर संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट से प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक, वैश्विक कार्य संस्कृति और व्यावहारिक कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये अनुभव राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर 28 से 30 किलो सेब पेटियों में भरा जा रहा है, जो सरकार के आदेशों की अवहेलना है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिस पर बागवानों को अपना पंजीकरण करना होगा। एमआईएस के तहत सेब खरीद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 बोरी तक ही खरीदे जाने संबंधी कोई निर्देश सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा ने एमआईएस के तहत सेब उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा मात्र 45 करोड़ रुपए जारी करना बागवानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि कुल देनदारी लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक की है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों तक बागवानों को उनकी मेहनत के पैसे से वंचित रखना राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने राज्य सरकार से एमआईएस के तहत बागवानों की पूरी बकाया राशि तत्काल जारी करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एचआरटीसी की खस्ता हालत और जर्जर बसें आए दिन प्रदेशवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही दुर्घटनाएं, तकनीकी खराबियां और अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले बसों के बंद होने की घटनाएं राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को मजबूत करने के बजाय राज्य सरकार ने इसे बदहाली के हालात में पहुंचा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा गंभीर संकट में है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को पेमेंट जारी की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए के सड़क कार्य प्रगति पर हैं और पीएमजीएसवाई के तहत क्षेत्र में 18 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में पार्किंग के लिए 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चंबा जिला की ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को बिना पंजीकरण यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चंबा में यात्रा की तैयारियों व व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रे पासवाल ने बताया कि 1 अगस्त से पंजीकरण की सुविधा

0: उपलब्ध होगी।
1: विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी यात्री जो है वो मनी महेश यात्रा के लिए नहीं परमिट किया जाएगा। पुलिस विभाग जो है अपने जो बैरियर्स लगाता है मुंबई ऑनवर्ड्स वहाँ पे सुनिश्चित करेगा। एंड रजिस्ट्रेशन एज ऑफ राइट नाउ इज सेल्फ रजिस्ट्रेशन। मनी महेश ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे लगभग 1 अगस्त के आगे से आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सभी यात्रियों से श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि जो जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि पर डे का स्लॉट लगभग 5,000 के आसपास का है, तो उससे पहले पहले अपना ये रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइमली कंप्लीट कर लें।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 में बदलाव करते हुए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 23 से 45 वर्ष के स्थान पर 23 से 50 वर्ष कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पात्र आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। ऊना जिला में भी मछली पालन किसानों की आय बढ़ाने का साधन बन रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से ऊना जिला के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और पारंपरिक खेती के साथ साथ मछली पालन अनेक किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बनता जा रहा है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 40% तथा आरक्षित वर्गों एवं महिलाओं को 60% का अनुदान का प्रावधान है। योजना के माध्यम से तालाब निर्माण, गुणवत्तापूर्ण मछली बीज और चारा उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता के अलावा मछलियों को ताजा अवस्था में बाजार तक पहुँचाने के लिए आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल अथवा 3-व्हीलर की खरीद पर भी अनुदान का प्रावधान है। योजना के माध्यम से किसान सजावटी मछली पालन इकाई भी स्थापित कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: शिमला नगर निगम द्वारा शहर के बाजारों को नो वेंडिंग जोन बनाने और तह बाजारियों को हटाने की मुहिम के खिलाफ कल तह बाजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तह बाजारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर नहीं बसाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तह बाजारियों के अनुसार पिछले लगभग 15 दिनों से काम पूरी तरह बंद होने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
3: 15 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं हो रही है, किसी के पास अपना रोटी पानी का इंतजाम नहीं है।
4: ये सोए हुए, इनको कोई चिंता नहीं है हमारी।
0: प्रदेश में आज से मॉनसून के सक्रिय होने से अनेक स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। चंबा व कांगड़ा में रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जबकि राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि प्रदेश के अन्य भागों में बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है।
5: मानसून एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा, जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई से चालू होगा और जिसमें रुक रुक के जो है बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखा जाएगा लगभग 22 जुलाई तक। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है अंब अंदौरा स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं, ऊना होकर चलेगी करतोली एक्सप्रेस। इसी अखबार की एक अन्य खबर है नीट यूजी में कांगड़ा के आकर्ष हिमाचल के टॉपर। पंजाब केसरी ने प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सुर्खी दी है, सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग एक नीतिगत फैसला, न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कर्मचारी बोले 5-डे वीक से वर्ष में होगी 100 करोड़ रुपए की बचत, दैनिक जागरण की एक खबर है। दैनिक भास्कर व दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, 6 मेडिकल कॉलेजों में 320 सीटें बढ़ाएंगी राज्य सरकार, विशेषज्ञ चिकित्सक बढ़ेंगे। हिमाचल दस्तक लिखता है पीजी सीटें 270 से 597 करने का प्रस्ताव। पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं व प्रचार तक सीमित। एचआरटीसी की खस्ता हालात से बेखबर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को जारी होगी पेमेंट। और प्रदेश में आज से मॉनसून फिर सक्रिय, 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है, क्योंकि आपका प्यार हम तक पहुंचता रहता है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत समाचारों के बाद फिर से करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और इस गीत के बाद आपके साथ होगी बहुत सारी बातें। तो चलिए जानते हैं ये गीत जिंदगी के बारे में क्या कहता है। शोर फिल्म का ये गीत श्रोताओं, अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की मिली जुली आवाज़ों में आपके अपने रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ कहता, बहुत कुछ समझाता ये गीत था श्रोताओं। और इस गीत के बारे में अगर कहें तो, अगर कभी आप उदास हो या कभी आप परेशान हो तो इस गीत को अगर आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, गहराई से सुनेंगे तो ये गीत हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे मायने बताता है। बहुत सी गहराइयाँ इस गीत में छुपी हुई हैं जो कि हमें बताता है कि ज़िंदगी जो है वो हम दोनों की कहानी है, यानी कि ज़िंदगी सभी की एक तरह ही है। इस ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान आते हैं और आकर चले जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस उन तूफ़ानों में खड़े रहना है, हौसला रखना है, संयम रखना है। और कहते हैं ना, जो संयम रखता है, धैर्य रखता है, वो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। साथ ही श्रोताओं, इस गीत में एक लाइन और भी आई थी, तूफ़ान को आना है, आकर चले जाना है। कौन सा वो इंसान है जिसकी लाइफ में, जिसकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान ना आया हो? कोई भी एक ऐसा इंसान शायद ही होगा जिसकी लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आई हो, कभी कोई तूफ़ान ना आया हो। लेकिन श्रोताओं, वो तूफ़ान आए होंगे लेकिन आकर चले भी तो गए होंगे। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि ये ज़िंदगी ऐसी ही है, इसे हमें हंस कर और खुश रह कर ही बिताना चाहिए। खैर, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं और आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे मौसम के बारे में श्रोताओं। और मौसम के बारे में मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात करें तो 18 से 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। लगातार बारिश और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और साथ ही अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रदेश में 18 जुलाई को मंडी और कांगड़ा के एक दो स्थानों पर भारी बारिश, कुल्लू शिमला और सिरमौर में एक या दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही श्रोताओं, 19 जुलाई को चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह से हमीरपुर और सिरमौर में एक से दो स्थानों पर भारी बारिश और सोलन, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू के में मध्यम से भारी वर्षा का होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो श्रोताओं, ऐसे में विभाग हमें यही कहता है कि बिना मतलब से, बिना किसी काम से घर से बाहर ना निकलें, और अगर कहीं जाना भी है तो बारिश से बचने का पूरा इंतज़ाम आप करके जाएं। तो इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत। हम साया फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर पहुँचा रहे हैं, रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।
1: म्यूजिक टीचर।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, गीतों के साथ साथ जानकारियां भी आप तक पहुंचानी होती हैं और कुछ खास बातें भी करनी होती हैं। श्रोताओं, हर दिन का इतिहास आपके समक्ष रखते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। और आज के दिन की बात करें तो आज 18 जुलाई का दिन है, शनिवार का दिन है। तो श्रोताओं, आज का दिन किन बातों के लिए याद रखा गया, किस लिए दर्ज हुआ, चलते हैं जानते हैं। 18 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है श्रोताओं, क्योंकि इसी दिन 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। दुनिया भर में इस दिन को शांति, न्याय और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, 1947 की बात करें तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति दी, जिससे भारत और पाकिस्तान के विभाजन और स्वतंत्रता का रास्ता साफ हुआ। साथ ही 1857 की बात करेंगे तो भारत के सबसे पुराने और प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना भी आज के दिन हुई थी। 1918 की बात करें श्रोताओं, तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला का जन्म भी आज के दिन हुआ। उनके सम्मान में ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में ज़रूर हम बात करने वाले हैं इस खास दिवस पर भी, तो बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। अब कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं एक और तराने के साथ, सिर्फ तुम। इस फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, बरसात का आगमन हो चुका है और कुछ स्कूलों में जो है वो बरसात की छुट्टियां जो पड़ती हैं वो भी पड़ चुकी हैं, और ऐसे में हम बच्चों से, नन्हे मुन्नों से यही कहेंगे कि छुट्टियों को इंजॉय कीजिए जैसे कि हम जाते थे अपने नाना नानी, मामा मामी या फिर दादा दादी के घर। तो वहाँ जाइए और अपनी छुट्टियों को इंजॉय कीजिए, साथ ही आपको जो होमवर्क मिलता है उसे भी आराम से कीजिए। कई बार श्रोता, हम अगर अपनी बात करें तो हमें जैसे ही छुट्टियों का काम मिलता था तो हमारी कोशिश रहती थी एक या दो दिन में ही हम लोग फटाफट उस काम को ख़त्म कर दें ताकि पूरी छुट्टियों को हम इंजॉय कर सकें। लेकिन धीरे धीरे जो काम किया जाता है और आराम से जो काम किया जाता है उसका फ़ायदा अलग होता है। तो हम यही कहेंगे कि छुट्टियों का काम जो है आप वो डिवाइड कर लें, हर दिन का कौन सा काम आपने कब करना है उस हिसाब से रोज़ाना थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई पर यानी कि होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क पर दें और बाकी का दिन आप इंजॉय करें। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि बरसात का मौसम है और ऐसे में आप लोग बिना किसी बड़े को बताए घर से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे, और बरसात में ज़्यादातर खास करके नदी नालों के पास जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो होते हैं शरारती, क्योंकि हम भी थे और हम भी शरारत करते थे, इसलिए हम जानते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि शरारतें बच्चे ही करेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ हमें कहीं जाना है और पूछ कर जाएंगे, कोई बड़ा हमारे साथ जाएगा तो शायद हमारे लिए ठीक रहेगा और हमें डांट भी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ तो भाई डांट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो श्रोताओं, ऐसी छुट्टियों में आप लोग देखिए अपने हॉलीडे होमवर्क तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें टाइम मिल जाता है। हमें पेंटिंग करना पसंद है, हमें लिखना पसंद है, तो हम लोग पेंटिंग भी कर सकते हैं, कविताएँ लिख सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर के अंदर बैठकर ही खेल सकते हैं। शतरंज हो गई, कैरम हो गया, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी का ये खेल जो हमारे समय से चला आ रहा है वो भी आप बैठकर खेल सकते हैं। साथ ही गीत सुनिए, गीत लिखिए, गीत गाइए, नृत्य का अभ्यास कीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं श्रोताओं जो कि आप करके अपनी छुट्टियों को इंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों, छुट्टियों के बारे में हमने की बातचीत और अब आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम में एक और प्यारे से गीत की ओर। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस गीत को सुनकर हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना कहीं उन्हें स्कूल की भी याद आ जाएगी। किस लिए ये कह रही हूँ, ये इस गीत को सुनकर आप सभी समझ जाएंगे। तो लीजिए अंकुश फिल्म का ये गीत, पुष्पा पगधारे और सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, सुना आपने ये गीत और आप में से बहुत सारे श्रोताओं को आपका अपना बचपन या स्कूल समय ज़रूर याद आ गया होगा। अगर आप सभी को याद आया है तो आप अपने हाथ खड़े कीजिए। बिल्कुल हाथ खड़े करने की ज़रूरत नहीं है श्रोताओं, लेकिन हाँ एक छोटी सी मुस्कान दे दीजिए ताकि हमें लग जाए पता कि आपको आपके बचपन का दिन याद आ गया, वो स्कूल की असेंबली याद आ गई, प्रार्थना सभा याद आ गई जिसमें हम खड़े होते थे एक लाइन में और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे। श्रोताओं, प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना करते समय हम आंखें बंद करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर झांकते हैं और ऐसी प्रार्थनाएं करने के बाद अपना मन हल्का और शांत महसूस भी करते हैं। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा। आज 18 जुलाई है और एक ऐसा दिन जो हमें मानवता, समानता और क्षमा की ताकत का संदेश देता है। आज पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के महान नेता थे। उन्होंने रंग भेद जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ वर्षों तक संघर्ष किया। इस संघर्ष के कारण उन्हें 27 साल तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा या नफरत का रास्ता नहीं चुना। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने बदले की नहीं बल्कि प्रेम, शांति और मेल मिलाप की बात की। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। यही सोच उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान दिलाती है। तो श्रोताओं, इस दिवस का उद्देश्य केवल मंडेला जी को याद करना नहीं बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना भी है। संयुक्त राष्ट्र लोगों से अपील करता है कि कम से कम 67 मिनट समाज की भलाई के लिए ज़रूर दें। और साथ ही श्रोताओं, आज के दिन आप छोटा सा काम कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग का हाल चाल पूछ सकते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। साथ ही श्रोताओं, बरसात के दिन है और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि उन्हें उनकी जो झुग्गियाँ हैं, जो उन्होंने टेंट बना रखे होते हैं, वो बरसात आने तक कहीं ना कहीं से फट जाते हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं तो उन्हें भी जाकर तरपाल या ऐसा कुछ खरीद कर दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी बरसात में अपना जीवन यापन सही से कर पाएं। और इन बातों को अब यहीं पर देंगे विराम और आपको फिर से लिए चलेंगे कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत की ओर। ब्लैकमेल फिल्म से गीत श्रोताओं इसे लेकर आए हैं और आवाज़ दी है इस गीत को किशोर कुमार ने। तो लीजिए इस गीत को सुनते हैं हम सभी मिलकर।

श्रोताओं, पल पल दिल के पास कोई रहता है। हर किसी के दिल के पास कोई ना कोई ज़रूर रहता है, और हमारे भी दिल के आसपास आप लोग ज़रूर रहते हैं जब हम कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े होते हैं। हमारा ध्यान भी आपकी ओर होता है कि हमारे श्रोता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बातों में हिस्सा ले रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस गीत के बाद अब चलेंगे जानकारी की ओर, और आपको बताएंगे कि विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा 2026 का आयोजन इस वर्ष जो है आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त से 19 सितंबर तक किया जाएगा। तो श्रोताओं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार बैठे होंगे, और आपसे यही कहेंगे जब भी ऐसी यात्राओं पर हम निकलते हैं तो कुछ एक बातों का हमें ख्याल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए, और यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए हमें उस यात्रा में जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए ही बनते हैं, उनका पालन भी हमें करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही मणिमहेश यात्रा के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण एवं स्लॉट बुकिंग की सुविधा आधिकारिक वेबसाइट www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर आरंभ होगी। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर आरंभिक रूप से प्रतिदिन लगभग 5,000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे। श्रोताओं, कृष्ण जन्माष्टमी एवं राधा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या, मौसम तथा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्लॉट की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी। इसके साथ ही मणिमहेश यात्रा के पंजीकरण शुल्क को ₹20 से बढ़ाकर ₹50 कर दिया गया है। बैठक में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा अवधि के दौरान कुगती परिक्रमा मार्ग भी बंद रहेगा। ये फैसले शुक्रवार को मणिमहेश ट्रस्ट की मिनी सचिवालय में संपन्न बैठक में लिए गए। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो कुंचन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद, इस खबर के बाद कार्यक्रम में फिर से हम लौटेंगे मनोरंजन की ओर, और आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को जिसे हम लेकर आए हैं सरगम फिल्म से। गीत को आवाज़ों से सजाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, जब भी कोयल बोलती है ना तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम और सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आवाज़ होती ही इतनी मीठी है। और दूसरी तरफ अगर कौवा कहीं से बोलता हो तो हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी काएँ काएँ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कानों को खाती है। तो श्रोताओं, बात वही है कि आपकी बोली में, आपकी बातों में कितनी मिठास है वो डिपेंड करता है आपके बोलने पर। और आपकी बातें जितनी मीठी होंगी, जितनी अच्छी होंगी, उतने ही लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे। अगर आप

उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि केवल सुनना ही नहीं बल्कि ध्यान से और मन लगाकर सुनना भी एक महत्वपूर्ण कला है। श्रोताओ, कई बार हम कई कहानियाँ सुनते हैं, कई कथाएँ सुनते हैं और सुनते ज़रूर हैं, कान हमारे ज़रूर लगे होते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और ही होता है। और जब हमसे पूछा जाए कि हमने सुना क्या, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब अपनी बात कहने में तो आगे रहते हैं, लेकिन दूसरे की बात पूरी शांति और धैर्य से सुनना अक्सर भूल जाते हैं। जबकि कई बार किसी व्यक्ति को सलाह नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो उसकी बात बिना टोके और बिना निर्णय किए सुन सके। बिल्कुल श्रोताओं, और ऐसे दोस्त मिलना भी बहुत मुश्किल है जो हमारी बातों को बड़े ही धैर्य से, बड़ी ही शांति से सुने। आजकल के समय में अगर हम अपना दुखड़ा किसी के आगे रोएंगे तो वो कहेगा बस करो यार, अब बस हो गया, नहीं सुना जाता और ना ही कोई सुनने के लिए किसी के पास समय है। लेकिन श्रोताओं, थोड़ा सा समय हमें ज़रूर देना चाहिए अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, और हो सकता है किसी के मन का बोझ हल्का हो सके हमारे साथ बात करके। तो श्रोताओं, अच्छा श्रोता बनने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, संवाद जो है वो बेहतर होता है, गलतफहमियां कम होती हैं, नई बातें सीखने का अवसर मिलता है, मानसिक तनाव भी कम होता है। तो आज के दिन हमें एक छोटा सा संकल्प लेना है, जब कोई हमसे बात करे तो उसे पूरा समय दें, उसकी बातचीत में ना बात को ना काटें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और भावनाओं को सम्मान भी दें। क्योंकि कभी कभी किसी को दिया गया हमारा कुछ मिनटों का ध्यान उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इस विश्व श्रवण दिवस पर आइए सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनना सीखें। तो श्रोताओं, हम भी सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे एक और प्यारी सी धुन। तो चलिए सर फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचाते हैं कुमार शानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, बरसात की धुन आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से। और बरसात की धुन देखिए कल शाम से शुरू हुई है और इस बरसात ने सबको ही थोड़ा सा परेशान कर दिया है। और कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि गर्मियां बहुत बढ़ रही हैं, उमस बहुत हो गई है, लेकिन बारिश जो है वो हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश बरसे और मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अब गर्मी से राहत जो है वो मिल गई होगी। तो श्रोताओं, बरसात का ये मौसम है और ऐसे में बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इस पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हुआ है 10:30 और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे इस विषय पर। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। 2 घंटों में श्रोताओं हम आपके साथ करते हैं बातचीत और जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं, साथ ही आपका मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे आपके साथ सोशल मीडिया की। श्रोताओं सोशल मीडिया आजकल हर किसी के हाथ में है, हर किसी के इस्तेमाल में आ रहा है और हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ अपनी रेसिपी बनाते हैं घर पर किचन में वो डालते हैं, या कोई कढ़ाई कर रहा है, या कोई सिलाई कर रहा है, या कोई डांस कर रहा है, या गा रहा है, तो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं और हम लोग उन्हें देखते हैं। खैर ऐसे बहुत सारे रील्स जो लोग बनाते हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें डालते हैं जिन्हें देखकर सच में अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है, और सोचने पर कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर भी हो जाते हैं कि सच में ऐसा होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपकी जाकर अपने हर काम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। श्रोताओं कई बार लोग कहते हैं कि लोग ना छोटा सा भी अच्छा काम करते हैं तो सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां आपके उस दिखावे से किसी का फ़ायदा होता हो, लाभ होता हो, तो वो दिखावा ज़रूर होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि श्रोताओं कुछ दिनों से सुधेड़ गाँव के एक नए प्रधान जो बने हैं अजीत जी, वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ डाल रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सच में अगर हमने चुना है किसी प्रधान को तो अगर वो ऐसा है तो बहुत अच्छी सोच वाला है, बहुत अच्छे काम वो कर रहा है। श्रोताओं हम कार्यक्रम में हम उनकी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उनका कोई प्रचलन कर रहे हैं, लेकिन हाँ बात जरूर कर रहे हैं कि कोई भी जब हम किसी भी व्यक्ति को चुनकर लेकर आते हैं अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और जब वो काम करता है, अच्छे काम करता है, तो सच में हमें लगता है कि हमारा दिया गया एक छोटा सा वोट जो था वो सफल रहा। तो श्रोताओं सुधेड़ के जो प्रधान हैं ये आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डाल रहे हैं जिसमें वो अपने सुधेड़ गाँव की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे युवाओं को साथ में लेकर चल रहे हैं, और जहाँ कहीं कचरा मिलता है या कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज होती है तो उसकी साफ़ सफाई का जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले की ही अब बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने बरसात आने से पहले जहां पर भी जो रास्ते, जो रोड कहीं से गिरने वाले थे या लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने पत्थर, बड़े बड़े पत्थर उठाकर साइडों में रखे और उन्हें वाइट पेंट कर दिया ताकि आने जाने वाले वाहनों की कोई घटना या दुर्घटना ना हो पाए। तो श्रोताओं ऐसी जब हम खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी सोच आती है कि हमें भी बढ़ चढ़कर अपने पर्यावरण के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने वार्ड के लिए सोचना चाहिए। साथ ही श्रोताओं गमरू गांव की बात करें तो गमरू गांव में भी वहां के जो युवा साथी हैं उन्होंने भी एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो ग्रुप के साथ काम करते हैं और अपने गांव में कुछ समय निकालते हैं साफ़ सफाई के लिए, पर्यावरण की सफाई करते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालते हैं। तो वीडियो डालने से उनका फ़ायदा ये है कि हम लोगों को उनकी वीडियोस देखकर लगता है कि हमें भी जागरूक होना चाहिए। हर कोई अगर मिलजुल कर काम करेगा तो पिक्चर जो बनकर सामने आएगी वो बहुत सुंदर होगी। तो श्रोताओं ज़रूर सोचिए और ऐसे ही काम सभी को करने चाहिए, चाहे वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रधान हो या घर या गांव के और युवा वर्ग क्यों ना हो। और कहते हैं ना कि जब एक इंसान काम करता है तो दूसरा उसे देखकर उसके साथ हाथ बटाने आ जाता है, 2 से 4, 4 से 6 कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो श्रोताओं कार्यक्रम में अब बातों को यहीं पर रोकेंगे और आपको सुनाएंगे ऐसा ही एक गीत जो हमें आगे बढ़ने के लिए और एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित करता है, नया दौर। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

साथी हाथ बढ़ाना। बिल्कुल श्रोताओं, हमें अपने साथी के साथ हाथ बटाना चाहिए और हम कई लोग बढ़ाते भी हैं। और श्रोताओं, ये गीत हमें यही सिखाता है कि कोई भी काम अगर हम मिलजुल कर करें तो वो काम जल्दी हो जाता है और हम में एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान बना रहता है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब थोड़ी सी बात हम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, और ऐसे में हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। श्रोताओं, आजकल हमें प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। जहाँ सब्जियों के मामले में हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, टमाटर की विशेष रूप से शामिल रखना चाहिए, वहीं अमरूद, नींबू, संतरा और आंवला भी इन दिनों हमें खाना चाहिए, और शरीर को भरपूर विटामिन सी इससे हमें मिलती है। दालों में हमें राजमा, चना, मूंग दाल ज़रूर खाना चाहिए। पनीर को भी प्रोटीन के लिए हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। श्रोताओं, बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो कई बार हमारे कई ऐसी सब्जियां, ऐसी दालें नहीं खाते हैं। कई बार वो कहते हैं हमें ये नहीं खाना है। उन्हें भी हमें थोड़ा सा अपनी बनाने की तरीके को बदल कर अगर हम बनाएं जिससे कि बच्चों को वो खाने में अच्छा लगे, तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि खाने को थोड़ा सा फिर बदल करके या उसे बनाने की विधि में थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। साथ ही श्रोताओं, कैल्शियम की कमी हो तो बारिश के दिनों में खास करके पालक, मेथी, चुकंदर और सीमित मात्रा में गुड़ का सेवन भी हम कर सकते हैं। तो खाने पीने का खास ख्याल रखिए, और बरसात में खास करके ये ध्यान रखिए कि खाना ताज़ा ही खाएं, गर्म ही खाएं। स्वास्थ्य की इन बातों के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं श्रोताओं, और चलते हैं फिर से आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत, चलते चलते इस फिल्म का गीत। अब आप सुनेंगे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

श्रोता 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं पिछले दिन नीट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है और बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो इस रिज़ल्ट के साथ खुश रहे और उन्हें सभी को हम रेडियो गुंजन धर्मशाला के परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं साथ हम ये भी कहेंगे कि जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि ये ज़िंदगी ही एक एग्ज़ाम है। श्रोताओं अगर आज हार है, अगर आज हम फेल होते हैं तो फिर कोशिश करेंगे तो ज़रूर पास भी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम निराश होकर कहीं ज़िंदगी से फेल हो गए तो श्रोताओं हम अपने हर मौके को खो देंगे। इसलिए ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है और जीत हार ज़िंदगी में चली रहती है, कोशिश करनी है, दोबारा से हमें तैयार होने हैं और दोबारा से हमें उत्तीर्ण होना है। और अभी आपने सुना कार्यक्रम में ये गीत सुनोना सुनोना, तो हम आपसे यही कहेंगे कि सुनोना सुनोना फिर से एक प्यारी सी धुन कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो श्रोताओं सुनते हैं इस प्यारी सी धुन को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में एक मैडम यानी कि एक घड़ी मैडम बैठी हैं जो कि अपनी सुइयों से हमें इशारा कर रही हैं कि अब हमें जाना पड़ेगा, यानी कि कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होने को है। तो हम अपनी बातों को अब देंगे विराम और आपसे आज के लिए लेंगे अनुमति। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि हम रोज़ाना आपको छोड़ के जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आज भी हम आपको छोड़ कर जाएंगे एक प्यारे से गीत के साथ। आशिकी 2 फिल्म का गीत श्रोताओं श्रेया घोषाल की आवाज़ में अब आप सुनेंगे। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। नमस्कार।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान।

0: जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: हाँ, और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और

0: जांच कराइए।
1: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: अरे ले आओ यार नाश्ता।
3: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा?
4: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
3: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
2: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
3: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
4: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
3: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
5: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ आप सभी रख रहे हैं। तो एक फिर से खास जानकारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। हर बार कुछ ना कुछ खास हमारी जिंदगी से जुड़ी बातें रहती हैं, जो कि हमारी डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उससे जुड़ी बातें, जागरूकता से भरी, सतर्कता से भरी। तो आज के कार्यक्रम में भी बहुत खास बातचीत, बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज आप सभी के साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं, सुरेश कुमार जी जो कि नरवाना के रहने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं कि आज वो कौन सी ऐसी खास जानकारी है जो आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला में, हमारी इस खास बातचीत में। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए कि आप क्या करते हैं, हमारे दोस्तों को अपना परिचय दीजिए।
1: मैडम, मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, और मैं ग्राम पंचायत खास नरवाना से हूँ
0: जी।
1: और अभी जो मैं एग्रीकल्चर पे काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ। छोटा सा किसान हूँ, पर यहाँ की खेती छोटी है हिमाचल की। छोटा सा किसान हूँ पर अलग तरीके की खेती कर रहा हूँ, जैसे पोलियोस पे है, बटन मशरूम पे कर रहा हूँ, फूलों पे कर रहा हूँ, ऐसी खेती कर रहा हूँ
0: जी। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब किस तरह से ये दिनचर्या रहती है आपकी, किस तरह से चुनौतियां आती हैं, या एक सिंपल वे में आपको सारी चीजें मतलब करने में इजी रहता है?
1: पहले तो मैडम ये अलग सा अनुभव था, पर अब तो काफी टाइम हो गया, जैसे 5-6 साल हो गए, तो इसमें अब तो इनकम सोर्सेज जैसे बन गए हमारे पोलियोस वगैरह से
0: जी।
1: तो अब तो अच्छा लगता है कि जैसे खेती करना। पहले तो लगता था कि नहीं यार ऐसे ही काम डाल दिए, पर नहीं, जैसे पोलियोस वगैरह में है तो अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं जिससे हमारी इनकम सोर्सेज जो बन रहे हैं। मैडम यहाँ खेती कम होती तो परिवार चलाने के लिए थोड़ी सी खेती तो अपने लिए करनी पड़ती है, पर एक आधुनिक तरीके से भी खेती कर रहे हैं और एक परंपरागत खेती हमारी जो पहले से चल रही है, जैसे धान की खेती हो, गेहूँ की खेती हुई, इसको भी हम साथ में कर रहे हैं, पर आधुनिक तरीके से जो जो खेती है, जैसे पोलियोस की खेती है, अपना फूलों की खेती है, इसको भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, जिससे कि इनकम सोर्सेज वाली खेती भी कर रहे हैं और अपने घर के खर्चे वाली खेती भी कर रहे हैं, जिससे हमें जरूरतमंद चीज़ें मिल सकें।

0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने जाना कि सर ने बताया कि ये पॉली हाउस में जो है खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती भी करते हैं और इससे जो है इन्हें इनकम सोर्सेस का भी एक हेल्प जो है वो मिल रही है। खेती की बात, क्योंकि आज के समय में सर हम देखते हैं कि खेती से लोग जो है अपनी एक तरह से जो है इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत का काम है और बस फटाफट से, जो पहले खेती करते थे हम बहुत मेहनत किया करते थे बैलों के सहारे से, लेकिन अब उन्हें भी आवारा छोड़ दिया गया है और खेती का काम कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगा कि आम खेती से आपको पॉली हाउस की तरफ जाना चाहिए?
1: मैंने तो साधारण सी बात है कि आधुनिकीकरण तो हुआ अभी तक, तो स्वाभाविक है कि जब आधुनिकीकरण हुआ है तो बैल तो अब सड़क पे आएगा
0: जी,
1: क्योंकि बैल की जगह छोटे वाले ट्रैक्टरों ने ले लिए, जैसे पावर व्हील वगैरह ने ले लिए। तो आधुनिकीकरण से खेती का जो है लगाने का तरीका, जो समय यानी बचा भी है लोगों का, जो खेती पहले की जाती थी बैलों के द्वारा उसमें टाइम लगता था, ठीक है, तो अब जो खेती है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है आधुनिकीकरण से। जैसे अभी सारी औजार जो हैं मशीनी आ गए हैं, तो उसमें वो चीज़ें सारी आज की टाइम समय को बचा रही हैं, तो समय बच रहा है, पर फिर भी लोग खेती छोड़ रहे हैं। एक्चुअली इनकम सोर्सेज बहुत कम है खेती से, जो इनकम है परिवार चलाने के लिए तो वो बहुत कम है, पर लोग उसको सही तरीके से पुराने परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। अगर नए तरीके से करेंगे तो वहाँ से जब उनकी इनकम शुरू होगी तो वो खेती फिर दोबारा करने लगेंगे। पर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को जानकारी नहीं है
0: जी।
1: हम चाहते हैं कि गांव में छोटी छोटी किसी भी लेवल से जैसे एक मीटिंग्स वगैरह कराई जाएं, बच्चों को उसके बारे में समझाया जाए, बताया जाए। कुछ एक लोग जो हैं वो खेती से निकले, जैसे हम निकले हैं, हमें भी ऐसे ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ ट्रेनिंग्स दी गई थी। मैने पोलियोस की ट्रेनिंग ली थी कृषि पालनपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से
0: जी।
1: उसके बाद मैंने मशरूम की ट्रेनिंग की थी कांगड़ा विश्वविद्यालय केंद्र से। तो वहाँ से हमें पता लगा कि इन चीज़ों से भी इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। तो छोटे से कमरे में मैंने मशरूम का काम शुरू किया था, तो जब इनकम शुरू हो गई तो पता लग गया कि ये चीज़ें यहाँ से आ सकती हैं। जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो लोग वहाँ की तरफ चलेंगे,
0: इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा,
1: तो खेती छोड़ रहे हैं लोग क्योंकि वहाँ से इनकम नहीं आ रही लोगों को।
0: तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब एक आम खेती से पॉली हाउस की तरफ जाना, या ये ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए आपको मतलब किसी ने सजेस्ट किया, या किस तरह से ये आपका मतलब सफर रहा?
1: मैंने मैडम एक बार यूट्यूब में एक वीडियो देखा था
0: जी,
1: सोलन के फार्मर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालनपुर में आए हुए थे
0: जी,
1: तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों ने उसका वीडियो बनाया था और उसको यूट्यूब पे वगैरह पे शेयर किया था। मैंने वहाँ से देखा था, तो वहाँ पर थे डॉक्टर देशराज सर, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो उसमें मैंने जब यूट्यूब में देखा, उनका नंबर ढूंढा मैंने, फिर उनसे जब मैंने तालमेल किया तो पता लगा मुझे कि यहाँ से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे फर्स्ट ट्रेनिंग जो पोलियो की कराई थी यूनिवर्सिटी में
0: जी,
1: और सेकेंड कराई थी उन्होंने हमारी मशरूम की।
0: जी।

0: आप हमारे दोस्तों को ये बता सकते हैं कि एक आम खेती और पॉली हाउस की खेती में क्या अंतर रहता है?
1: बहुत ज्यादा अंतर है खेती में। जैसे आप जो पॉली हाउस में खेती करते हो, उसमें मैडम ऐसा होता है कि वो खेती जो है, एक तो उसको 3 या 4 महीने में आप कवर कर सकते हैं। ऊपर से उसमें मौसम की थोड़ी सी ये रहती है कि जैसे टेम्परेचर वगैरह जो उसमें मेंटेन
0: तो नीचे होता
1: किया जा
0: है।
1: सकता है। और खेती का ऐसा होता है कि जैसे पॉली हाउस शीट के नीचे आप बारिश से, धूप से, किसी भी तरीके से अपनी खेती को बचा सकते
0: बचा
1: हैं।
0: सकते
1: तो बचाने से ये होता है कि आप उसमें उसको बढ़ा ही सकते हैं, यानी जो 2 टर्म में खेती आ रही है उसको 3 या 4 महीने सकते हैं, क्योंकि 4 महीने में एक फसल वहां से निकल जाती है आराम से।
0: जी।
1: तो उससे आप अगर आप उसके जो जैसे पॉली हाउस में जो आप शिमला मिर्च लगाते हैं, जैसे रेड येलो शिमला मिर्च लगाई जाती है, अपनी खीरे की खेती की जाती है, तो ये सारी इनकम सोर्सेस खेतियाँ हैं, तो उसको पॉली हाउस से आप ले सकते हैं
0: जी
1: जी।
0: जी बिल्कुल दोस्तों।

0: मैडम, जैसे हमें कोई भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जब सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे हॉर्टिकल्चर से कराई जाती है, एग्रीकल्चर से कराई जाती है, उसमें जब भी ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसमें मेरे बोलने का मतलब ये था कि पहले मैंने आपको बोला वो ट्रेनिंग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे जब हमें जो स्ट्रक्चर को लगाया जाता है या कुछ उसमें, तो उसमें हर एक चीज़ को बताया जाता है। जैसे उसमें आप का लोन कैसे मिल सकता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें कितने परसेंटेज है से आपको पैसा मिल सकता है, कौन कौन सी स्कीम किस किस तरीके से है, वो हर एक स्कीम में बेनिफिट जो है वो उस ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाता है डिपार्टमेंट का, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं सारी चीज़ों के।
1: जी
0: जैसे पोलियो उस पर अलग 80-20 की स्कीम से भी चल मिलते हैं, पोलियो 85-15 की स्कीम में भी हैं फ्लोरिकल्चर के मिलते हैं जो। और अपने जैसे आपने बोरवेल वगैरह का ना, उसमें अलग स्कीम होती है। जैसे मैंने जब बोरवेल लगाया था तो मुझे 90,000 सब्सिडी मिली थी,
1: जी
0: बाकी मैंने अपना पैसा लगाया था। गवर्नमेंट की हर स्कीम है उसमें जो ऐड हुई है। जब वैसे ही आप फूलों की खेती करते हो उसमें भी गवर्नमेंट अनुदान देती है, जैसे कार्नेशन के लिए भी अनुदान देती है, जरबेरा फूलों के लिए भी अनुदान देती है, जिसको पोलियो उसमें लगाया जा सकता है। पोलियो में अलग से अनुदान मिलेगा, और जो पोलियो वगैरह लगाए जाते हैं प्लास्टिक सीट के, उसमें अलग से अनुदान दिया जाता है। इन सभी चीज़ों पर अनुदान है। आप पावर बिल्डर लेते हैं खेत को जोतने के लिए, तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है। और बैंक की तरफ से भी, जैसे बैंक की तरफ से KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, 3 लाख तक आज की डेट में नॉर्मल कोई भी गवाही के बिना उसको आप बना सकते हैं। पहले 1,60,000 रुपये भी नॉर्मल किसान को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आज की डेट में लोगों को पता नहीं है, तो हम चाहते हैं ट्रेनिंग से द्वारा इन लोग या गाँव में मन एक छोटा सा मंच करके इनको सामने किया जाए, जिससे कि लोग खेती के लिए आगे आए।
1: जी
0: जी
1: जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि यहाँ अगर हम कांगड़ा की बात करें या हिमाचल की ही बात करें, तो मैक्सिमम लोगों का जो है ज्यादातर एफर्ट्स आम खेती की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि अपनी जमीनें होती हैं, तो ज्यादातर यही होता है कि हम अपनी जमीनों को अच्छे से उपजाऊ बनाएं। तो आपको अपने एरिया, अगर हम नरवाना की बात करें, तो वहां पे और भी आपके आसपास मतलब ऐसी कुछ मोटिवेशंस हैं या आपकी ही ये पहल थी आपके गांव में?
0: मैम, जब से मैंने काम शुरू किया तो मुझे लगता है कि ये तो पहला आदमी मैं ही हूँ कि गांव में ये काम कर रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मेरे गांव में तो 300-400 कनाल भूमि है मेरे गांव की अपनी जो है, जो सभी की है मिलके, तो उसमें आज तक पानी नहीं है,
1: अच्छा
0: पानी नहीं है, कुल्ले नहीं है,
1: ओके
0: क्योंकि पहले कैंट बोर्ड एरिया था,
1: जी
0: पंचायत थी नहीं, अभी बनी है नई
1: अभी
0: नई
1: बनी
0: पंचायत,
1: है।
0: अभी
1: जी
0: नई नई
1: जी
0: पंचायतें बनी है, अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है। पर वो चीज़ें कुल्ले बंद हो गई थी, तो मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे भी खेती करना छोड़ दी थी। पर कुछ टाइम से जब मैंने भी ये किया, काम शुरू किया है, तो मेरे पास ऐसे गांव में थी नहीं मोटिवेशन कोई चीज़, पर जब मैंने किया तब लोग थोड़ा करने लगे हैं, खेती को
1: चलो
0: बचाने
1: ठीक
0: लगे
1: है
0: हैं कि अब ये बचेगी तो इससे पैसा आ सकता है।
1: जी।
0: इस तरीके की चीज़ें तो हो रही हैं अभी,
1: तो
0: पर हमारे
1: आप
0: आसपास नहीं थी पहले। पहले
1: पहले नहीं थे, तो आपने कब से ये शुरू किया है?
0: मुझे मैंने 6-7 साल हो गए इसके लिए ना।
1: 6-7 साल। तो कितना डिफरेंस अभी तक आपको लगा?
0: पहले ऐसा था मैडम कि बाहर काम करता था मैं, तो मुझे कम से कम महीने में 7-8 या 10 हज़ार तक सैलरी मिलती थी। बाहर ही काम किया, लोकल एरिया में काम किया,
1: जी
0: पर आज की डेट में मैं दिहाड़ी लगाता हूँ मैडम, आज की
1: मतलब
0: डेट में मैं
1: पॉलीहाउस के
0: अपने फोरियर्स वगैरह में काम करता हूँ, जितनी भी इनकम सोर्स है वहीं से निकालता हूँ। तो आज की समय में जो परिवार है मेरा ठीक है, यानी गुजर बसर अच्छी चली हुई है पहले से।
1: जी तो जैसे कि आपने बताया कि आप फूलों की खेती करते हैं,
0: जी
1: तो आप कौन कौन से किस किस प्रकार के फूल जो है वो उगाते हैं और उसे फिर मतलब आप सेल करते हैं, या किस तरह से आपका वो बिजनेस रहता है?
0: मैंने मैडम शुरू की थी पहले खेती अपनी गेंदा फूल की, तो इसको ओपन फील्ड में लगाया था, क्योंकि मेरे पास पोलियोस नहीं थे तभी,
1: जी
0: तो मैंने इसको शुरू किया था ओपन फील्ड में लगाया था इसको। तो ओपन फील्ड में दीपावली वगैरह के टाइम पे इसका काफ़ी
1: ज्यादा
0: वो ज़्यादा
1: मांग
0: रेट
1: होती
0: वगैरह, रेट वगैरह मांग
1: है।
0: होते हैं,
1: जी
0: तो मैंने वहाँ लगाया था, तो उसमें से मेरे को अच्छी इनकम निकली थी। फिर मैंने इसको फिर उसको पोलियोस पे ले गया मैं, पर पोलियोस में जो लगाने से इसकी जो बाहर से इसकी इनकम बराबरी एवरेज बराबर आ रही थी, तो पोलियो उसके छोड़ को इसके मैंने बाहर ही किया। जैसे बरसात के दिनों में इसको हम पोलियो उसके अंदर ले जाते हैं, पोलियो
1: अच्छा
0: उसके टनल के अंदर ले जाते हैं, जिससे कि बरसात के दिनों में, क्योंकि बाहर तैयार नहीं होता, इसमें पानी भर जाता है। तो वहाँ से शुरू किया था मैंने। जैसे फिर फूलों की खेती से जुड़ने सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने गेंदे की खेती शुरू की। उसके बाद जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने सोलन में यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली, नोनी यूनिवर्सिटी में, तब मुझे वहाँ पे कार्नेशन और जयवेरा के बारे में बताया गया। तो अभी हम जो

0: तो मैं एक बात अपने दोस्तों तक ये भी पहुंचाना चाहूंगी कि जैसे ये जो हम पोली हाउस अगर स्टार्ट करना भी चाहें इस खेती को, तो इसमें कोई भी कर सकता है, मतलब या कुछ इसमें रूल्स वगैरह होते हैं या कुछ प्रोसीजर होता है इसका?
1: नॉर्मल सब जो आदमी खेती कर रहा है जिसके पास खेत है वो बागवानी डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आजकल तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इसमें है नहीं अभी, पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बोलियोस किया, तो इसमें नॉर्मल अपनी एक जमीन का पर्चा ले जा सकता है और उसमें वो देख सकते हैं कितनी जमीन है और कितने उसी हिसाब से वो मिल जाएगा, नॉर्मल किसी भी आदमी को मिल जाता है, किसी भी किसान को मिल जाएगा वो
0: जी,
1: ऐसा।
0: तो अब आपके आसपास जो लोगों का सहयोग है आपके लिए वो किस तरह से रहता है?
1: अब तो लोग भी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी,
0: जी,
1: आजकल तो करते हैं सहयोग, नहीं ये काम चल सकता है।
0: तो जैसे आपने कहा कि पानी की व्यवस्था नहीं है, कूलों की व्यवस्था नहीं है, तो आप पोली हाउस में पानी की अरेंजमेंट कैसे करते हैं? मतलब वहां भी पौधों के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो वहां पे आप किस तरह से वहां पानी पहुंचाते हैं फिर?
1: मैडम मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बोरवेल लगवाया हुआ, वो भी
0: अच्छा
1: सरकार के
0: अच्छा
1: अनुदान से लगा हुआ मेरा, तो उसमें 90,000 सब्सिडी मिली थी मुझे,
0: अच्छा
1: और
0: सब्सिडी का
1: हॉर्टिक
0: प्रावधान भी इसमें
1: जी
0: किया जाता है?
1: हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब मैंने पोलियो लगवाए थे तो मैंने उनसे एक रिक्वायरमेंट की थी सर कि मेरे पास पानी की कमी है, पानी नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोरवेल दिया था उसमें, क्योंकि आप इसमें जो पोलियो है इसमें आप ड्रिप इरीगेशन से पानी दे सकते हैं, तो इसमें आपको जो है मोटर के थ्रू ही पानी देना पड़ेगा, तो मैंने बोरवेल करवाया
0: जी,
1: सरकार की तरफ
0: तो
1: से। देखिए
0: सब्सिडी का क्या इसमें वो रहता है, रूल रहता है, मतलब किस तरह से दी जाती है या किस तरह से अगर लोग करें तो उन्हें थोड़ा सा नॉलेज हो जाए उस बारे में?
1: जैसे मैंने आप कोई भी काम करना चाहेंगे जैसे पोलियो पे करना चाहेंगे काम, तो जैसे आप डिपार्टमेंट में अपनी जो रिक्वायरमेंट रखेंगे तो आपको वो पोलियो का जैसे बताएंगे कि इतनी इतनी सब्सिडी इस पोलियो में, कोई MIDH में लगते हैं, पुष्पक्रांति में लगते हैं, ऐसे लगते हैं पोलियो, तो वो तभी बता देते हैं कि आपको इतने परसेंटेज पे सब्सिडी मिलेगी और इस तरीके से आपको यानी इतने इतने दिनों बाद सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सरकार के बजट पे डिपेंड करता है कि सरकार के पास बजट कितना है,
0: जी,
1: पर अप्रूवल तभी मिलेगी आपको, ऑनलाइन करेंगे आप तो अप्रूवल तभी मिलेगी जब सरकार डिपार्टमेंट के पास बजट होगा, तो वो खुद ही डाल देते हैं सब्सिडी वगैरह उनके अकाउंट में।

0: तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ने जाना और समझा इस बात को कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तब भी हमें ये हेल्प की जाती है। बोरवेल आप लगवा सकते हैं और उसके माध्यम से जो है अपने पौधों को पानी की व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं पूरी तरह से, और सब्सिडी का भी प्रावधान जो है इसमें किया जाता है। तो सर, जैसे कि हम पॉली हाउस की खेती की बात कर रहे हैं, तो आपको 6-7 साल हो गए इस बिजनेस में, इस काम को करते हुए। तो हमारे दोस्तों का सवाल ये भी हो सकता है कि जैसे हम पॉली हाउस में तापमान और नमी को कंट्रोल करना कितना जरूरी है पौधों के लिए, कैसे कर सकते हैं, और अगर ना किया जाए तो उससे क्या-क्या नुकसान जो है वो हो सकते हैं।
1: तापमान और नमी को तो मैंने कंट्रोल करना ही पड़ता है,
0: जी
1: क्योंकि ज़्यादा तापमान से भी पौधे ख़राब होते हैं, मुरझा
0: जी
1: जाते हैं। तो जो पॉली हाउस लगे होते हैं उसमें एक फैन लगे होते हैं, बड़े फैन लगे होते हैं, और फोगर सिस्टम लगा होता है उसमें। जैसे आप उसको फोगर को ऑन करेंगे तो पानी धुएं की तरह होगा, तो उसमें टेम्परेचर वगैरह मीटर जो हम लगे होते हैं उसमें,
0: जी
1: तो आप उसको टेम्परेचर मीटर पे, जैसे आप पंखे ऑन करेंगे, फोकर को ऑन करेंगे, तो वो जो टेम्परेचर मीटर है उस पर आप अपना पूरा सिस्टम देख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे मैंने इसको पॉली हाउस को रखना है। तो
0: जी
1: ये चीज़ें जो पॉली हाउस लगते हैं इनमें ऑलरेडी होती हैं, पर थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन कितने टेम्परेचर पे हमने अपनी फसल को रखना है। अगर उस तरीके से चलेंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं कि किस टाइम पे कितने तापमान जो पे इसको रखना है। तो उसमें जो मीटर लगा उस पे लग जाता है पता है कितने टाइम, तो नॉर्मली हो जाता है वो
0: मतलब वो
1: बहुत
0: ट्रेनिंग
1: आसान है।
0: के दौरान जो है वो सारी
1: सारी चीजें
0: चीजें बताई
1: बताई
0: जाती
1: जाती
0: हैं,
1: हैं
0: है ना।
1: जी
0: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, ट्रेनिंग को अटेंड करना बेहद जरूरी है हमारे लिए। विदाउट ट्रेनिंग हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, विदाउट प्लानिंग के। तो सर, अगर हम इस बात का ध्यान ना दें या गलती से ना दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है?
1: मैडम। जो पोलियो है ना, ये कीड़ों के लिए एक 5-स्टार होटल है।
0: जी
1: तो ये अगर आप इसको देखेंगे नहीं, तो जो कोई भी कीड़ा अगर इसमें चला जाता है तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि तो पोलियो हाउस पे आपको परमानेंट निगरानी रखनी पड़ेगी, उसको छोड़ के आप ऐसे नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो घर के किसी आदमी को बताएंगे जो आपकी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन
0: पार्ट
1: चुका हो,
0: बन चुके हो,
1: या अपने से ही आप आपस में बातचीत से ही हिस्सा बन चुका हो,
0: उनको समझा दिया हो
1: समझा, तो
0: आपने।
1: उस तरीके से कर सकते हैं। अगर नमी नमी की भी बात करें तो इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा होता है सारा, तो पानी भी उस तरीके से छोड़ा जाता है, पौधे के जमीन से स्तर पे खुद पता लग जाता है कितना पानी देना है इसको। क्योंकि ये चीज़ें उसमें ऑलरेडी पहले से ऐड की हुई है डिपार्टमेंट ने, तो ये जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगता है तो उसमें पानी बूंद बूंद सिंचाई है, आप समझ रहे होंगे,
0: जी
1: तो उसमें बूंद बूंद सिंचाई से पानी इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर तापमान का खासकर इसमें ये होता है कि तापमान इसमें बिल्कुल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे आजकल धूप ज़्यादा हुई है
0: जी
1: तो फूल तो वैसे मर जाएगा, फूल तो टिकेगा
0: बिल्कुल
1: नहीं, फूल तो वैसे नहीं दिखता है।
0: जी
1: तो ये चीज़ें आपको टोटल ये है, आपको ट्रेनिंग के माध्यम से जो पता लगेगा कि टेम्परेचर मेंटेन करने से करना है, अगर वो आपको जानकारी होगी तो आपका पोलियो का भी नुकसान नहीं होगा। अगर उसको नहीं देखेंगे आप तो वो पोलियो से 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाएगा।
0: जी तो सर, अभी आप जो है अपने पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो उगा रहे हैं?
1: अभी मैडम हम मैंने रेड येलो शिमला मिर्च लगाई हुई है इस वक्त, एक में कार्नेशन लगा हुआ है और एक में जरबर लगा हुआ है। अगर इसमें कोई कमी रह जाएगी पोलियोस में तो पोलियोस खत्म हो जाएगा, पर यह है कि कमी रहती नहीं है, क्योंकि तो कम टाइम पे आपने पानी देना है तब आपको कम टाइम चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाई खड़े रहना है, आप मोटर ऑन कर देंगे 10 मिनट, यहाँ इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है वहाँ खड़े, पर आपको तापमान टेम्परेचर मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसका।
0: जी सर, अभी आपने बात की कि किसी तरह से अगर कमी रह जाए तो मतलब किस तरह की कमी जो है वो देखने को मिलती है, मतलब कोई हमारी
1: हाँ
0: नजरअंदाजगी या।
1: बिल्कुल, नज़रअंदाजगी सबसे बड़ी, अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
0: जी
1: अगर आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम लगती है तो उसको आपको बिल्कुल गहराई से देखना पड़ेगा उसको।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जो आप ये सब्जियां वगैरह उगाते हैं या फूल वगैरह उगाते हैं, तो आपके मतलब लिंकेजेस किस तरह से आपने क्रिएट किए हैं? आप मतलब किसी शॉप के साथ या गांव में ही जो है वो सेल हो जाती है, किस तरह से आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है?
1: मैडम मैंने तो आज तक जितना काम किया वो मैंने गांव में ही रेस्ट, गांव में जैसे कि मेरे योल आर्मी है
0: जी
1: साथ में ही,
0: जी
1: तो काफ़ी बड़ा हब है हमारे लिए आर्मी
0: बिल्कुल
1: का, तो मैक्सिमम चीज़ें हमारी यहीं बिक जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किराएदार होना भी यहाँ पर बड़ी बात है,
0: जी
1: और योल योल ऐसी जगह है जहाँ पे जगह जगह के लोग ज़मीन लेके रह रहे हैं, उन इन इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जितना सा आप हम कर पा रहे हैं यहाँ छोटे स्तर पे, वो सारा अभी तक तो यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। पर अगर कुछ लोगों के साथ हम टाइप पे, किसानों के साथ टाइप पे हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं 3-4, हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास है कुछ बढ़ेगा तो हम अपनी एक बैन वगैरह रख के कुछ करके उसको दिल्ली में।
0: मतलब दिल्ली वगैरह तक आप भेजने की कोशिश करने से। अच्छा, फूलों का आप किस तरह से करते हैं, मतलब फूल जो आप तरह तरह के उगाते हैं तो उसका यूज आप किस तरह से, मतलब उसे भी आप शॉप्स वगैरह में या बुके वगैरह या किस तरह से आप उसको करते हैं?
1: अभी तो मैडम हमारी शॉप्स हैं, जैसे यहाँ शीला चौक में है, कांगड़ा वगैरह में शॉप है,
0: जी
1: तो जो कट फ्लावर है वो तो अभी जितना हमारे पास हो रहा है
0: जी
1: वो तो यहाँ एडजस्ट हो रहा है। गेंदा फूल मंदिर वगैरह में लग जाता है,
0: मंदिर
1: वो
0: जी
1: तो यहाँ लग ही जाता है, वो तो जितना मर्जी उगाए लोग यहाँ लग जाएगा। बाकी कट फ्लावर अभी तक जो यहाँ पर उगा रहे हैं, जो फार्म में उगा रहे हैं, वो यहीं एडजस्ट हो जा रहा है, उसको वहाँ यहाँ वहाँ पानी नहीं जरूरत। थोड़ा बहुत हम अपनी गाड़ियाँ सजाते हैं, शादी वगैरह में बुके वगैरह बनाते हैं, तो हमारा

0: बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए कितने एक तरह से मतलब कि पॉलीहाउस की खेती से हम बहुत तरह की जो है चीजें अपने साथ लेकर चल सकते हैं और एक इनकम सोर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्किल्स का होना जरूरी है, काम की कमी नहीं होती है। काम हमें तभी नहीं दिखता जब हम अपने हुनर को पहचान नहीं पाते हैं, खुद की अहमियत को हम जान नहीं पाते हैं। तो फिलहाल आज के समय में जो है वो खेती को थोड़ा सा बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग नजरअंदाज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न तरीके से एक अलग नजरिए के साथ जो है लोग खेती के साथ ही अपनी आजीविका को बढ़ा भी रहे हैं। तो वही नजरिए और वही जो तरीके हैं हमें अपनाने हैं। तो उसी के साथ जो है हम बदलते समय के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे दोस्तों तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि ये पॉली हाउस खेती जो आप कर रहे हैं इसके क्या-क्या फायदे हैं।
1: मैडम, इसके फायदे हैं कि मैंने पहले बताया कि इसकी क्रॉप जो है वो एक, जैसे आप कोई भी, आप जैसे शिमला मिर्ची लगाते हैं, इसमें जैसे कैसे रेडी आलू लगती है, उसका रेट 200 से 250 रुपया रहता है,
0: जी
1: ठीक है। और जो एक पॉलीहाउस में जो खीरा लगाया जाता है, उसका एक अपना अलग ही रेट रहता है, जो एक समय पर एक बराबर ही रहता है, जैसे 30 से 40 रुपये किलो बिकता ही बिकता है। तो इसमें जो जो खेती की बनावट है, यानी जो फ्रूट की बनावट होगी, वो इतनी अच्छी होगी कि उसमें आप उसको लोग खुद लेना चाहेंगे। तो ये चीज़ें उसमें निकल सकती है, बाहर की खेती से निकल सकती है, जो बोली उसमें निकलेगी।
0: जी और सर किसी वजह से या किसी कारण जो है, अगर माना हमने बहुत सारी खेती पॉली हाउस में तैयार कर दी और किसी वजह से वो अगर नहीं हो पाई या कुछ नुकसान हो गया, तो उसमें भी कोई हमारी हेल्प होती है या कुछ होता है मतलब उसमें।
1: जी मैम, ये अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पीछे डिजास्टर हुआ इतना ज़्यादा, तो
0: जी
1: उसमें क्या हुआ था कि पूरी उसमें पानी भर गया था,
0: जी
1: तो सरकार का उस पर भी अनुदान है। अगर वहाँ पे अगर हम जो डिपार्टमेंट में बताएं, वो कमेटी बना के भेजते हैं एक छोटी सी, वो देखते हैं कितना नुकसान हुआ है, तो उस पर भी अनुदान वगैरह गवर्नमेंट जो करती है।
0: जी
1: खेती पे गवर्नमेंट का आज की डेट में सबसे ज़्यादा योगदान है।
0: जी तो बिल्कुल दोस्तों, नुकसान होने पे भी आपकी हेल्प जो है वो जरूर की जाती है। तो सर बहुत ही खास जानकारी जो है आपने हमें हमारे जो है दोस्तों तक पहुंचाई है और अपना बहुत ही कीमती समय आपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के लिए निकाला है। तो जाते जाते आप सभी दोस्तों को या अपने गांव वासियों को इस पहल को करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि पॉली हाउस खेती हो चाहे कोई भी खेती हो, आप उसके लिए क्या।
1: मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी काम करना है, ठीक है, करो, पर थोड़ा सा ध्यान अपनी खेती पे दो, क्योंकि वहाँ से भी जो इनकम सोर्स जाके बन सकते हैं। अगर
0: जी
1: कुछ लोग 2 घंटे भी, अगर सवेरे शाम अगर 2-2 घंटे भी काम करेंगे, तो वहाँ से इनकम सोर्स ही निकलेंगे निकलेंगे। तो जब 2 घंटे, हमने भी ऐसे किया है, ठीक, काम नहीं छोड़ा एकदम, पर धीरे धीरे किया, तो आज हमारी इनकम सोर्सेज वहाँ से बनी हुई है।
0: बने
1: जब इनकम सोर्सेज बन जाते हैं कहीं से, तो उस ऑफिस में जाने का दिल करता है। तो ये एक
0: जी
1: ऑफिस है हमारे लिए, ठीक, हम तो सवेरे उठ के ऑफिस में जाते हैं अपने, हम ऐसे नहीं सोचते कि खेतों में जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, एक लगाव सा हो
1: इनकम
0: जाता है ना
1: सोर्स
0: कि एक फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाती है सारी
1: जी
0: चीजें, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, जब हम मन लगाकर और ईमानदारी के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सच में जरा भी हमें महसूस नहीं होता कि हम कुछ नहीं कर रहे। हमें ऐसा लगता है कि यही हमारी दुनिया और यहीं से हमारे लिए सब कुछ है। तो बस यही लगन और जुनून जो है हर एक युवा में भी होना चाहिए, हर एक इंसान में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बहुत ही खास ये बातचीत आप सभी ने इंजॉय की है दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका, और हमारे साथ आज की इस खास बातचीत में जुड़े थे नरवाना खास से सुरेश सर जी। तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात पे जरूर गौर करेंगे, जरूर ध्यान देंगे और पॉली हाउस खेती के बेनिफिट्स को समझेंगे, जानेंगे और इसके और जो है आगे बढ़ेंगे। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को इस बातचीत को संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं,
1: थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
6: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
7: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको, एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा?
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

मेगाहर्ट्स पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हो कार्यक्रम ले करी माटी दी।

महक दर्शकों तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च या शुरुआत च तुह सारे दाई शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने जितने भी फेसबुक लाइव लिसनर दिखा दे तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। दर्शकों कार्यक्रम की शुरुआत अहां करी थी वे कने तुह सारे जो भी पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। दर्शकों गल अहां करिए कि जेड़ा कुछ लाइना न से जरूर तुह तक पहुँचानिया न। अहां जालू दिने की शुरुआत करते न या कोई भी अहां काम करते न तो कुछ ना कुछ अहां शुरुआत अहां कीती तहां जरूर तुह तक प्यार भरा नमस्ते भी कीता कने तुहदा जिहड़ा स्वागत है सभी कीता। इसी कने अगर अहां दे घर है कोई मेहमान आंदे न तहां तिना जो भी नमस्ते करदे न या तिना दा चरण वंदना जिहड़ा है से जरूर करदे न। तो ए लाइना न कि अहां अपने हत्था ने जिहड़ा है से अहां दे हाथ जिहड़ा न से बार बार पैरां जो छूंदे न या पैरां जो प्रणाम करते न ता जिहड़ा हाथन से पैरां जो पुछदे न कि जिहड़ा तीजो जिहड़ा है से कयो प्रणाम जिहड़ा है से करते न ता पैर जिहड़ा न से बोलदे न कि जमीन पर रहने वाले जिहड़ा न से हमेशा अहां जो प्रणाम करते न या चरण वंदना करते न कने जिहड़ा हवा च रहंदे न से कुछ ना कुछ इस चीज़ां जो नहीं करते न। यहाँ दे संस्कार हैं, यहाँ दा व्यवहार है। अगर अहाँ अच्छे संस्कार रख देन तो से यहाँ पर निर्भर करता है। दर्शकों इसी कन्ने यहाँ अपने कार्यक्रम दा जिहड़ा आगाज है सभी कन्ने कन्ने लाइना जिहड़ा न से तुहां तक पहुँचाईंदी न कन्ने शुरुआत अहाँ इस प्यारे दे गीत कन्ने करनी है क्योंकि यादा जिहड़ा न से हमेशा अहाँ कन्ने जुड़िया रहनिया न पर अहाँ यादा जो किस प्रकार संजोई करी रखते न से यहाँ पर निर्भर करता है। तो जरूर ये फरमाइश ये गीत तुह तक पहुँचा देना कने फरमाइश अहाँ जो आई है गोपालपुर ते कने तिना दा नाव है अजय जी तो जरूर तिना ये कल फरमाइश कीती थी तो आज अहाँ तिना तक पहुँचानी है कने तुह सारियाँ भी इंजॉय करनी है कने इसी कने अहाँ अपने कार्यक्रम का जिहड़ा आगाज है।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी गूंज कने हाँ फिर ते वापिस तुह तक पहुँचियो न, क्योंकि ये गूंज जड़े से तुह तक पहुँचना भी जरूरी है कने। ये जड़ा गीता दे सुरन सभी तुह तक पुजी आंदे न, तो कुथी ना कुथी ये जड़ा कार्यक्रम दा सफर है से तुह तक चलिया से और भी प्यारा लगता है। कने इसी कने अजकने दिने दी खासियत क्या वे, अजकना दिन कयो खास है। हर दिन हाँ तुह तक दिने दी खासियत दस देन, समय भी दस देन, क्योंकि समय जड़ा है सियाह दी जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। 2:09 जड़ा स्टूडियो दी घड़ी है तेदे मुताबिक जड़ा समय है सियाह तुह तक पहुँचाई है। तो हाँ अपनी घड़ी जो भी दिखा दी होने ने कि 2:10 जड़ा ने से हुई न, तो 10 कार्यक्रम च हुई न। बाकी जड़ा तुहल इस कार्यक्रम दा सफर है तो जल्दी जल्दी इस बाकी दे सफर से जुड़िया, क्योंकि जुड़ने वास्ते तुह जो थोड़ा दिया नंबर जड़े से तुह तक पहुँचाई दे न, क्योंकि नंबर तुह तक पुजाऊंगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर लिखना शुरू कर दिया क्योंकि नंबर तुह तक मैं लगी हो है पहुँचाना कने तुह दा काम है लिखना। नंबर है 7018117091। ये नंबर तुह तक पहुँचाई तय कने बाकी जड़ा काम है से तुह है तो ज़रूर अपना काम जड़ा से शुरू कर दिया, क्योंकि अहाँ भी अपना काम शुरू करने है कने अजकने जड़ा दिने दी खासियत है या अजकना जड़ा दिन है 18 जुलाई 2026 का ये दिन शनिवार का दिन तो हाँ जरूर इंजॉय करा दे होने न, कने अहाँ भी अपनी गलबात लेकर तुह तक पहुँची हो न, कने तो हाँ सारे भी मेरी गलबात दा जड़ा इंजॉय है सभी लै दे होने न। कने बारिश दी गल करिए या मौसम दी गल करिए तो कुथी ना कुथी बारिश दा जिहड़ा दौर है से जारी है। कल्ले ते जिहड़ा है से बरखा लगी हो है ता मौसम दे अनुसार तुहां अपना जिहड़ा ख्याल है सभी जरूर रखना है, क्योंकि मानसून च बच्चियां दा ख्याल किस प्रकार रखना है हम बार बार ही दे उपर गलबात करते रहते न, कने तुहां तक अपनी जिहड़ा गलबात है से पहुँचाते रहते न। तो इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है।

ये तो हाँ सारे अंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश फरमाइशी कार्यक्रम में माटी दी महक तो जरूर फरमाइशा का जेड़ा दौर है सभी तो तक कहाँ पहुँचाते हैं कने ये भी दिखी लेंदे ने कि फरमाइश अहाँ तक कुते आई हो कने से कुतों के रहने वाले ने कने तिना का ना क्या है ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना का नाव है सुनील कुमार जी कने से रहने वाले ने कोठियाँ जलोड़ ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने श्रोता भी जरूर इंतजार पर बहते न कने अहाँ भी तिना दे इंतजार के अनुसार तिना दिया फरमाइशा तिना तक पहुँचाते न कने गलबात अहाँ करा दे न कि बारिश के मौसम च या मानसून च बच्चों का जेड़ा देखभाल है से किस प्रकार करना चाहिए साफ सफाई का जेड़ा ध्यान है से ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी इसी कने जेड़ा कपड़े न या जेड़ा हाथ हैं तिना का ध्यान रखना भी पेरेंट्स का काम है क्योंकि बच्चा तो छोटा है पर पेरेंट्स अगर बच्चे जो समझाता है या बच्चे जो दसदा है तो जरूर बच्चा उस गल जो बनता है कने इसी कने जेड़ा हत्थां दी साफ सफाई दी अहां गल कीती तां सभी बड़ी ज़्यादा जरूरी है मानसून दे समय बच्चों दे जेड़ा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होंगी कने इसी कने बच्चों का जेड़ा खान पान है खान पान ते पहले बच्चों के जेड़ा हाथ हैं से धुलाना जरूरी है कने कपड़ों का चुनाव सभी सही तरीके ने करना जरूरी है मानसून के मौसम च खास गलों का जेड़ा ध्यान है से अहां जो रखना चाहिए 15 साल तक दे बच्चे जेड़ा न से हमेशा नरम कने साफ कने सूखे कपड़े जेड़ा न तिना जो पहनाने चाहिए वैसे तो हर पेरेंट्स जो पता है कि बच्चे का जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखना है पर कुछ गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी होंदा कने अहां भी तुहां दा जेड़ा ध्यान है से समय समय अनुसार रखते हैं कने तुहां भी जरूर इस कार्यक्रम दे सफ़र कने जुड़ते हैं तो फिर ते जेड़ा सफ़र दी खासियत है खासियत जरूर गीत संगीत कने आती है कने गीत संगीत जलो अहां दे श्रोता सुनना शुरू हो जाते हैं तो से खासियत तिना तक पहुंची आती है कने जितने भी फेसबुक लाइव दिखा दे तिना जो भी मेरा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तो फिर ते तो जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश की ओर क्योंकि इंतज़ार थोड़ा दिया ख़त्म करते हैं तो हाँ वास्ते थोड़ा दिया इंतज़ार तो करना पौंदा है पर अहाँ जो भी इंतज़ार थोड़ा दिया करना पौंदा है कि अपनी जेड़ा गलबात है से जरूर तुह तक पहुँचाई देन तो गलबात अहाँ जरूर तुह तक पहुँचाई दी है कने इसी कने ये गीत भी तुह तक पहुँचाई देन फरमाइश

बिल्कुल श्रोताओ, तो हम सारे ही सुनिया प्यारा दिया गीत, प्यारी दई फरमाइश, थोड़ा दिया मस्ती भरा गीत, थोड़ी दई सच्चाई। क्योंकि जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है ना, सियां जो हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सिखाई करी जाते हैं, पर सीखना यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ क्या सीख देना। जिंदगी कुछ ना कुछ नया दौर जरूर ले करी आती है, या अनुभव जड़े से जरूर अहाँ जो देख रही जाती है, कने अहाँ तिना अनुभव जो किस प्रकार लेंदे न से यहाँ पर निर्भर करते हैं। इसी कने अहाँ अपनी गलबात पर वापिस आई आते न कि मानसून जड़ा न इस बच्चों का जड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखना चाहिए, बरखा का जड़ा मौसम है से बच्चों जो बीमारियाँ तो बचाने वास्ते अहाँ जो जिहड़ा घरे दा बनिया ताज़ा पौष्टिक भोजन है या देना चाहिए, या उबला फिल्टर जिहड़ा से पानी बच्चों जो पिलाना चाहिए, इसी कन्ने मच्छरां ते भी जिहड़ा बचाव है से करना चाहिए। क्योंकि अगर घरे च पानी जमा हो जाता है तो इस पानी जो साफ करने का काम भी जिहड़ा फैमिली जितने भी सदस्य ने तिना का काम है, हर चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। इसी कन्ने बाहर खेलना जाते हैं बच्चे तो ज़्यादा मानसून च अगर भिगी आते हैं तो तिदने भी बीमार जड़ा ना से होई आते हैं, तो इसी कन्ने खेलना भी जरूरी है। हाँ, इन्नी बोला दे कि बच्चों जो खेलना नहीं भेजना है, या छोटे बच्चे न से तो वैसे भी अपने ही खिलौनिया च मस्त रहते हैं या अपनी ही धुंद च मस्त रहते हैं, पर मस्त से खुद रहते कने बाकियां जो भी जरूर मस्त जड़े से रखते ना, तो वह सारे जो ही पता है। कने जितने भी पेरेंट्स सुना दे उन्हें ने या छोटे बच्चे या जड़ा थोड़े बड़े न से सुना दे होंगे, सभी जरूर अपने चेहरे पर स्माइल लो दे उन्हें, क्योंकि तिना दी जड़ा चेहरे दी स्माइल है से कुती ना कुती यहाँ जो मनमोहित करी लेंदी है। तो ख्याल रखना भी तो होंदा ही काम है, जिन्ना से अपने चेहरे दी स्माइल करने अहाँ जो खुश रख दे ना तिना तोहाँ भी तिना जो खुश रखना है। कने अहाँ तो समय समय अनुसार तो दियाँ जड़ा फरमाइशां से तुहां तक पहुँचाते रहते हैं, तो इसी कन्ने फिरी तो मुझे लगता थोड़ा दे अगे बढ़ते न कने समय की जड़ा सूही है से टिक टिक टिक कर दी 2:25 यानी कि 26 तक पहुँची हुए, तो इसी कन्ने चलते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना। सुनने तैयार रहना, वैसे भी श्रोता जड़ा है ना से गीत संगीत सुनने हमेशा तैयार रहते, कने फरमाइश है ना तिना दी पसंद का गीत है जालू तिना तक पुजी आंदा है तो थोड़ा देर तिना जो अच्छा फील लगता है, तो ज़रूर अच्छा फील करा। कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला तुहा सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने फिर त्यहाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात ऊपर कने इसी कने तुहा सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी होने न ये सफर तुहां तक बिल्कुल लाइव चलिया कने पहले जेड़ा शो था न से जरूर अहां कने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी, और ठीक ठाक है
0: जी? ठीक ठाक है जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्म शाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? ठीक है हमारा से जी। मैडम जी
0: जी तुहां अपनी रेडियो सेट दी आवाज कम कर लेंगे जी?
1: हाँ जी हाँ जी कर दा मैं कह रहा है कुछ जरा
0: जी।
1: हेलो
0: जी कर ली तो हाँ आवाज कम।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो हाँ कुतुते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी?
1: मैं जी धर्मशाला से बोला था
0: जी। धर्मशाला
1: कचहरी से?
0: कचहरी से जी। ना क्या है जी तो हाँ दा?
1: मेरा नाम गोची राम है जी।
0: जी क्या काम काल लगे है जी तो हाँ क्या करा दे?
1: क्या कमाना वाले पूरा दिहाड़ी दौड़ी जाते हैं मैडम जी।
0: जी तो मौसम कदे है धर्मशाला दा?
1: मौसम का सवेरे तो बड़ी बरखा होने भी पता नहीं क्या रही है काम।
0: जी जी
1: हाँ जी जी
0: जी तक दे लगदा तो हम जो ये कार्यक्रम रोज ही सुन दे?
1: रोज ही सुन दे रहे दे अरे ताली दिल के ताली सुन सुनना लग जाने।
0: जी जी तक दे लगदा जी तो हम जो ये कार्यक्रम?
1: हाँ जी हाँ जी बढ़िया लगता जी। एक दिन बढ़िया लगता कचहरी प्रोग्राम बढ़िया लगता
0: जी। बाकी प्रोग्राम भी सुन दे तो हाँ?
1: हाँ जी
0: बाकी जेड़ा गुंजन दे प्रोग्राम हैं तिना जो भी सुन दे?
1: हाँ सुन दे रहे जी।
0: जी जी चलो अच्छी गाल है ना जी रेडियो कन्ने दिल लगाया तो हाँ ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता आज हाँ जेड़ा गाल बात करा दे न सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचाई दे न गाल बात हाँ ये करा दे न कि मानसून च बच्चों का जेड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम ये जरूरी है बच्चे एक ही पता लगता ना आजकल मौसम चले आ
0: जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता पेरेंट्स का काम रहता है कि बच्चों जो हर चीज़ दसना है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी ता जरूर तो हाँ अपनी फरमाइश दसी दिया जी कौन दिया गीत सुनने तो हाँ
1: सुना दिया वाला हम अमन कौर की आवाज सुनाई दिया वाला खुद में
0: जी। अमन कौर की आवाज से कौन दिया गीत सुनने जी तो हाँ
1: घर मेरा निके दे जाना निका
0: जी सुनाई। अच्छा घर मेरा निका जिया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी जरूर है गीत भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
1: मैडम जी बड़ा धन्यवाद
0: जी तो हाँ दा भी तो श्रोताओ तो सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो तुम सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर से जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है से एक बारी फिर ते तुहां तक पहुँचाई दे ना क्योंकि नंबर पहुँचाना हाँ दा काम है कने कॉल करना तुहां दा काम है। नंबर है 7018117091 नंबर तुहां तक पहुँचाई तो है कने तुहां नंबर जेड़ा है से नोट करी लिया होना है कने जेड़ा फरमाइशां दा दौर है सभी जरूर अहां तुहां तक पहुँचाना है कने इसी कने गलबात अहां जेड़ा करा दे न से जरूर तुहां तक पहुँचाई थी हो है पर जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है तुहां क्या जिंदगी ते सिखा दे न क्या जेड़ा सीख है से तुहां लै दे न कोशिश अहां करते न ताई अहां अपनी जिंदगी का हर लम्हा इंजॉय करते न अगर हर लम्हा अहां इंजॉय करते न ताई अहां जिहड़ा जिंदगी है हमेशा जिंदगी च खुश रहते न तने हर लम्हे जो अहां अजकना जिहड़ा दिन है अजकने दिन जो इंजॉय करा दे न तो यही लम्हा अहां वास्ते खूबसूरत बनी जांदा है शायद अजकने दिने दी यादा अहां कन्ने जुड़िया न पल भर दा कोई भरोसा नहीं है तो अजकना जिहड़ा दिन है या अजकने दिने दियां क्या यादा तुहां कन्ने जुड़िया न से जरूर रिमाइंड अहां जो हो जांदियां न साल बदलदा है महीने बदलदे न कुदरत दे अनुसार साल भी बदलता है, महीने भी आते रहते हैं। जून है तो जुलाई होना है, अगस्त होना है, सितंबर होना है। पर हाँ, किस प्रकार अपने दिने जो बेहतर बना दीन, या अपने लम्हे जो खूबसूरत बना दीन, अगले जेड़ा श्रोता है ना तिना कने कर देना गल बात।
1: रेडियो
0: हेलो
1: गुंजन धर्मशाला जी,
0: जी, नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा
1: नमस्ते जी।
0: रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: मैं दारू जी बोलना करता ना, मैं
0: जी
1: तुहाड़ा सब तो बड़ा फैन है
0: जी,
1: रेडियो गुंजन
0: धन्यवाद जी
1: का।
0: तुहंदा
1: मेरा नाम राजू दारू से। हाँ
0: जी। राजू जी, क्या नाम दस
1: जी
0: राजू ही ना जी?
1: राजू,
0: जी तो राजू
1: ये तुहाड़े
0: जी
1: जो
0: जी
1: रेडियो है ना सर, प्रोग्राम 2017 पहली अगस्त
0: जी जी
1: मैं गाने सुन रेडियो गुंजन सुनता, बाकी कोई रेडियो नहीं सुनता।
0: जी तहे दिल ते तुहंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तुहां इतना ज्यादा रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिंदे ना जी।
1: थोड़ा मैं फोन फोन फोन करना घटाई देना फोन
0: जी चलो, हुण तुहां फोन
1: का
0: करा
1: मैं। हाँ
0: जी,
1: जी
0: हुण फोन करा करा तुहां ना जी,
1: फोन
0: तुहां
1: का मैंने
0: अपना
1: ये नंबर जो मुझे सब कुछ है ना,
0: जी।
1: मैं ये बिल गया था पढ़ना
0: जी
1: और
0: काय
1: मौसम
0: बनना
1: साफ
0: जी?
1: होया कार
0: जी, हुण तां
1: बढ़ता कने कने कने गाने लाए,
0: जी
1: बच्चे की कप्पा लाई, बच्चे से क्या करना चाहता क्या नहीं,
0: जी जी
1: बरसाती मौसम होता ना बच्चे का ख्याल रखना पौंदा।
0: जी जी तो
1: मैं
0: तुहां
1: ये हाँ
0: जी,
1: जी
0: तुहां किस प्रकार बच्चें जा जिड़ा ख्याल है से पेरेंट्स जो दसना चाहेंगे कि ज़्यादा रखने की ज़रूरत है या कम? कई बार आहां दी छोटी दी लापरवाही भी
1: वो
0: आहां जो
1: बच्चे मेरे मंजला मंजला आए देवतरू
0: जी
1: शायद नलके जब बार बार पानी चले, बस
0: जी जी
1: बड़ी मुझे पकड़ी पकड़ी करने से ख्याल रखना पड़ता।
0: जी जी सही है ना कि होंदे तो शरारती पर ठीक है, चेहरे पर
1: वो शरारती की
0: स्माइल
1: तंग करते बार बार से बात सुनने पानी के चले
0: जी, तिने ज्यादातर पानी नहीं खेल रहती ना जी
1: हाँ जी हाँ जी पानी पानी खेल बाकी को नहीं।
0: जी और कोई
1: मैं
0: खेल
1: चला दुकाना बाजी खा ले बड़ा नाना दुकाना नहीं जाना बल्ले,
0: जी जी
1: बस पानी पानी के चली गए भैया लगे पानी के। हाँ
0: जी तो जरूर तुहां तिना दा ख्याल रखना है ना जी।
1: जी ख्याल तो रखना पड़ना जी बच्चे का
0: जी
1: ना होना
0: जी जी क्योंकि छोटे बच्चे ना, आहा ख्याल रखेंगे ताई तो से सेफ रहेंगे ना
1: सही
0: जी।
1: ना,
0: जी
1: सांझे भी हो जाते हैं खेल
0: जी आहा वास्ते तो खेल ही है ना जी
1: खेल ही होंगे बच्चे दी ना
0: जी
1: दादा भी फिर दोबारा
0: जी
1: अपने अपने घरे चले जाना
0: जी जी
1: फिर कला नहीं करनी खेल
0: जी
1: है
0: जी जरूर जी सही थी,
1: ना जी।
0: मैं गल बोला दी थी कि कोशिश हाँ जो ये करना चाहिए कि आज कना जेड़ा दिन है ना उस जो
1: हाँ जी हाँ जी
0: समेटी करी रखी लिया, पता नहीं आज कने दिने दिया क्या यादा हाँ कन्ने जुड़िया नहीं है ना जी।
1: सही होता ना बच्चे
0: जी
1: कने सारी
0: जी
1: यादा सारा जरा ये होता ना
0: जी
1: बचपन
0: जी जी
1: सह समझ याद आ जाता।
0: जी जी जी
1: हूँ कि बरसाती छुट्टियां पौंदियां
0: जी
1: खेलते लुक्कड़ घर खेलना
0: जी
1: गाड़े बछाड़े लुकी पौना
0: जी
1: फिर मम्मी डैडी समझो बखना
0: जी
1: बोले कोई कीड़ा होंगे कोई क्या होंगे
0: जी
1: कीड़ा खंडू होंगे न
0: जी कोई परवाह नहीं ना तालू आहां जो
1: तालू नहीं सही ना समझो अपना
0: जी
1: बचपन याद याद आंदा ना आई
0: जी जी जी
1: सही साबे ना बच्चे का
0: जी ता राजू जी आज
1: इन्हें
0: तुहां
1: दिखाए।
0: जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ताज कुंडिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: मैं सुनना दादी माता का भजन
0: जी अच्छा,
1: चली आई माता का। हाँ
0: दादी माता दा भजन सुनना है तुहां
1: जी
0: जी
1: ए गाया पवन कुमार ना।
0: जी जरूर, ये भजन तुहां तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा
1: हाँ जी हाँ
0: धन्यवाद
1: जी
0: जी। जी ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, दर्शो तो इसी कन्या हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो ले करी चलते न अगली फरमाइश दी और सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो।

0: दर्शकों सारे सुनया ही प्यारा दया भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजने की फरमाइश आ जो आई हुए धर्मशाला ते कने जरूर दिन तक हाँ ये भजन पहुँचाया कने तुहा सारिया भी इंजॉय किया। तो सारी भी इस कार्यक्रम के सफर च जुड़ी सकते अगले जेड़ा श्रोता ने सियाह कने जुड़ चुके हैं कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना जी? ठीक ठाक।
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: जी। तुह कुथों ते बोला दी कने तुहांदा नाम क्या है जी?
1: मेरा नाम तन्वी है कने मैं टिकड़ी ते बोल दी
0: जी। टिकड़ी ते बोला दे तन्वी जी।
1: जी
0: जी। ता तन्वी जी आज तुहां क्या काम कार छेड़िया क्या करा दे?
1: कुछ नहीं, स्कूले पढ़ाई करा दी
0: जी। स्कूले दी पढ़ाई करा दे
1: जी।
0: जी ता करी बैठे तो हाँ पढ़ाई की अली करा दे?
1: हाँ जी करी बैठे
0: जी। फिर रेडियो गुंजन धर्मशाला सुना देने ना जी?
1: हाँ जी
0: जी। ता तन्वी जी आज तुहा कुंडिया गीत सुनना पसंद करके?
1: मथे दा बिंदलू जी।
0: जरूर तन्वी जी ये गीत तुह तक पहुँचा दे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: हाँ जी ठीक है। मन जी तो अंदर रेडी गुंजन बड़ा अच्छा लगता
0: जी। बड़ा अच्छा लगता
1: जी।
0: जी तो ये कार्यक्रम कदिया लगता तो हाँ जो
1: बड़ा अच्छा लगता
0: जी। तो है छुट्टियां पी आनी है ना स्कूल है?
1: हाँ जी
0: जी। कल दिक पी है बरसाती दिया छुट्टियां तो है
1: 13 तरीका तक?
0: 13 तक
1: जी।
0: जी तो जरूर जेड़ा छुट्टियां दा मजा है सभी लेना है कने काम भी करना है ना जी?
1: हाँ जी
0: जी जी। तो जरूर तुहांदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद जी
0: जी। दर्शकों तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कने जुड़ी सकते इसी सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर ले करी चलते न सुनते नहीं सा प्यारी दिया फरमाइशा जो।

पार्टी दी मैं कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने तारशताओ इसी फरमाइश कहने फिर ते वापिस तो तक पहुँची हो न या अपने माइक तक पहुँची हो न कने जड़ा माइक है सही आँधी जड़ा आवाज़ है तो तक पहुँचा दे तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जो ज़रूर इंजॉय करा देना कने गीत भजन जरूर इंजॉय किया है राजू जी की फरमाइश से रहने वाले न दाड़नू ते तो अगली जिहड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुँचाते न तनवी जी तक तो सारी भी इंजॉय करा दर्शो तो गीते दे बोल तेरे माथे जो लगाना बिंदलू

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो इसी कन्ने इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुहां तक इतों ही संपन्न होंदा है क्योंकि सफर जिहड़ा से उन्हां जो इजाजत बोला दे कि तुहां सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जी दी अनुमति कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जितने भी श्रोता न तिना दी गूंज क्योंकि से सब गूंज कने जुड़ते न ताही ये गूंज चिड़े से अगे बढ़ती है तैसी कने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो, वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो?
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ।
9: MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
5: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
5: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, आगे भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
5: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
6: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
5: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
7: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाँ सचिन कपूर हाजिर हुआ हा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। तो क्या हालचाल ना श्रोताओं तुम दे, उम्मीद करनो सब भी रे हालचाल ठीक बुने तो सब खरे भुने हिन और अह भी बिल्कुल खरे हिन और ठीक ठाक हिन है ना। इंसान रे जीवन में शोतों बहुत सी शिकायत के न सो इंसान जो रिन दिन मनुष्य जो कि ना सो रिन दिन बहुत सी शिकायत अपने आप तो है ना। कदी इंदा बचपन की असो याद चली इंदा सो, कदी इंदी जवानी की असो याद चली इंदी असो, तो कदी जो इंदी लाइफ में मनु हिन और जो अबेसा दुनिया मंज निन जो गुजरी चुकुरे न सो याद चली इंदे नसो। हाँ ये दिल बड़ा नादान हाशोतों, ये दिल बड़ा बच्चा हाशोतों, ये दिल क्या एक सिकनारी भी है ना दिंदा ना दिंदा ना। हाँ कजो कि दिल तो बच्चा है ना लेते कर और हमेशा श्रोताओं कोई भी रिश्ता जाए सो दोस्ती रे रिश्ता प्यार मोहब्बत रे रिश्ता हा फैमिली होगी रिलेशनशिप रिश्ता हा हर रिश्ता क्या सो दिलारी हूं लेता जरूर निभे गंदा है ना। कहो दिल ता बच्चा दिल जो बोलता सो हुना चिंदा हा, लेकिन कभी भी तो है दिमाग हो कि कोई भी रिश्ता नहीं भले शोतों तो सो रिश्ता क्या कभी भी सक्सेसफुल ना बुंदा हा। बहरहाल नमस्ते नमस्कार और तुस सब भी जो मेरा प्यार भरा सियाने जो कि सो चरण वंदना हा। आऊँ तुंद अपना आरजीस रेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर बचुगो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हा। और कार्यक्रम मंच सभी बल लेता तू वो पता है श्रोतों किया है धर्मशाला रहा मौसम के सो दस दे। बहरहाल मौसम अब यह नहीं बदल सकते क्यों कि बरसाड़ा तो आऊँ अब जू एरू करता तो कि इंदे योल किनारी की सो बरखा लग रहा सिद्ध बड़ा सिद्ध बाड़ी किनारे कोई बरखा ही नहीं है तो ये हो सकता था इस समय जो हाँ टेम्परेचर लगभग लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास है और 86% की सो ह्यूमिडिटी हा जतियो अंग्रेजी में नमी के श्रोतों सो बल दिन तो यह मौसम की जानकारी तो श्रोतों तो सब जुड़ी सकते हैं 708-8-8-709 पर कॉल करी करी नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करी दिन हाँ 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी होगी साझा कर सकते हैं। एक गल विशेष ध्यान रहे कि जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर भोआ इंदे श्रोता असोगे कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बल्लों दिन और कड़ी थो बल्लों दिन। हेलो
1: हेलो सचिन जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी तुंदा आशीर्वाद है तुंदा प्यार है हूँ ठीक है
1: चलो ठीक है भगवान ठीक रख होते
0: जी जी जी जी। अच्छा आज मैं बचाने ले बागनी आली अम्मा बल्लूं दे की कौन बल्लूं दे जी
1: फतेहपुर आली अम्मा।
0: अच्छा फतेहपुर आली अम्मा अच्छा अच्छा बड़े दिन बाद करो तो है फोन और अम्मा जी नोयता जी
1: नोयता जी तो कोई ना वैसे त्राण ही ना लेकर साफ लगी तो ये लगी जरा खुश रहेगा आपको।
0: हाँ अम्मा ये तो लगी यार खुश रहेगा आपको। अच्छा बन्नी माता वाली अम्मा बल्लू कर देना है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: क्या बात है और अम्मा नोयता जी किया तुम दे
1: नोयता जी कुछ ना वैसे ही है चबूरा अपने बाबा से जरा प्राण आप हो।
0: अच्छा नोयता नोयता से कुछ भी नहीं
1: ना तो बारा ना मैं क्या ना कुछ दिया नहीं तो ना नोयता से क्या नहीं फोन ले वो होना अंदर से क्या होने लग गए।
0: चलिए जी कोशिश कर दें कि इन द जो कार्यक्रम असो इन द खास कर जो बुजुर्ग ने तीनों ज़्यादा पसंद चली या यंगस्टर जो भी चली या है ना और कोशिश रहें दिया हमारोज इन दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: दो भाई दो भाई रंदे बना विच राम ते लक्ष्मण की तरह
1: दो बोले। भाई राम ते लक्ष्मण बना के रंदे जाई गंगा जमुना दो बहना रंग नहीं बाबाले
0: मन। अच्छा अमा अगर ये गीत तो है मुझे लगता है काफी पुराना अंदर से अगर बोला तो जरूर तू सो होना ले है ना जी।
1: बड़ा पुराना बच्चे बड़ा प्यार भजन है राम भगवान का भजन।
0: अच्छा अच्छा अमा
1: दो डालियां तुलसी दिया पूजन नसीबा वाले।
0: अच्छा अमा बोला था जरूर जरूर दस
1: ले कोई ना बोलना था हमने बोल ले तो और बहुत ही बढ़िया सुनन दे पुराने पुराने।
0: हाँ कोई तुसु जरूर होने लो और हम अच्छा गल दस अजकल है ना फेसबुक रे माध्यम थों भी किए सो लाइव इच्छु कर दे तो फोन ना फान ना हो जुंदे कर खेंदे सकल तुसु। हाँ जी
1: हाँ
0: जी आवाज कटे गई थी जी आप बोले क्या बोल लूंदे ना
1: ए ना दस दिंदे कुंडी सकला तू गान मुझे लग रहे तो सकल दस दिंदे आती है पावना मांजे।
0: अच्छा अच्छा हो जुंदी सकला इंदी ना।
1: हाँ हाँ हाँ गंदी बेच वो जी गंदी।
0: अच्छा चलिए अम्मा जी अपना ध्यान रखना परिवार रा ध्यान रखना और
1: चलो जी ध्यान रखने वाला भगवान है बच्चे माता रानी है भगवान।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ जी
0: चलो बन्नी वाली माता तो इंदे अंग संग है ना जी।
1: चलो जी छोटा
0: हाँ जी
1: जी
0: ठीक है जी ठीक है तुसु जरूर हुन ले राम भगवान रा कोई न कोई भजन जो भी असु ले। हाँ ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर सो के हुनो कर दे निंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन। हाँ हुनने आले रा सभी श्रोता गण रहा चलिए कार्यक्रम जो हगो बढ़ देना और इन दे अगले श्रोता सो के बिल्कुल कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते
0: नमस्ते जी
2: मेरा नाम दक्ष हुआ।
0: हाँ जी
2: अंदर
0: पोइम दिया तो है हुनाई क्या बात है यार बहुत अच्छी गल और आऊँ बड़ा प्राउड फील करूँ करता इस समय कि तो है मतलब कविता के असो अपनी गदियाली गदियाली में हुनानी ना तुसु।
2: हाँ जी
0: क्या बात है ता श्रोताओं ये भरमोरा भरमोर इन दी रूट्स इन अह सब भरमोरा थो इन बेसिकली है ना इन दे जो पूर्वज थी सो तड़िए थो छूरन लेकिन इन दे कुछ और भी जो इन दे भाई ने समय सो रहे हो करते

0: और अपनी बोली जो इतना प्रेम अपनी बोली सो कि कविता के असो गद्दी मन सुनाने तो जरूर तो है भाई जरूर होना है फेसबुक रे माध्यम तो भी लाइव इन
1: कि मते शहर घूमे पर गम न कोई और सबनी तो बाता इंदा पर मुझे इतिहास पर तुमने पुर से रना तेरे आज भी पुराने घर रचना सबनी तुम ख्याल इंदा कुगती अगना ड्रोन है फात तो बड़े नर घोड़ सबनी तुम खराब बनने वाली रोड मुंह अरे मिट्टी है तेरी गुल्ला बड़ी पोली सबनी से चाल लोग तो ओली वाली री बोली अद्धे गद्दी से अद्धे कपूर यारे चर्चे पर दूर दूर इड़े हर कमारा मजा भरपूर उलान सब क्यों होता है बड़ा मशहूर इड़े ना पुज्जु के गंदी बीमारी सिर से तीरा डेरा मन सुखाड़ी मंदिर रहले पानी री बार सामने सेरी मेरे नगर था अद्धा गद्दी था अद्धा कपूर भरमोर सबसे बड़े दूर दूर दूर दूर, दूर धन्यवाद।
0: क्या बात है क्या बात है। तो है हुनाई बड़ी फास्ट फास्ट है लेकिन है समझे जरूर गए और असुसो की जितने और श्रोता हीन लक्ष्य होता सो भी समझ गया हूँ। अच्छा मुझे ना काम करना तो सो ये वीडियो की है ना सो व्हाट्सएप करने इस नंबर पर ठीक है।
1: हां जी
0: तो सो थोड़ा घर फेमस कर देना है
1: मेरी परमिशन की तू है सोनी ये सुनखी है बांसुरी बजने गाना लान।
0: क्या बात है जरूर जी जरूर जरूर होना ले तो सुई गीत है
1: हां जी धन्यवाद।
0: ठीक है जी। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो आगो बढ़न देन बहुत सारे श्रोता कॉल करू कर देन लेकिन लेकिन लेकिन ऐसा फिर ही मिलना हाँ श्रोतों इस समय सु लाइव भी किया सो बहुत सारे श्रोता हिरू कर दे हिन इन द अगले श्रोता असुगी कनेक्टेड हिन पुस दिन कुंड बल्लू देन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी सचिन कौर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी नमस्कार।
2: और घर बार परिवार सब ठीक ठाक सब।
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी घर परिवार सब कुशल मंगल आशीर्वाद उपराले रहा।
2: चलो जी ठीक होना चाहिए बाकी तो कोई चक्कर नहीं।
0: जी जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो बोल रहे हैं जनाब। अच्छा अच्छा लच्छी राम धर्मशाला कचहरी था कचहरी लग रही इस समय बरखा की ना लग रही जी।
2: बरखा ब्रीक ब्रीक लग रही का बाकी जो रहता है नहीं है थोड़ी ब्रीक ब्रीक ही है।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। जनाब कुंदन गीत होना पसंद कर ले।
2: ये तो सुनाया जा रही नहीं जी बरखा लग रही।
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होने ले तो सुए गीत है ना जी।
2: ठीक है सचिन को भी बड़ा धन्यवाद हो।
0: जी जी जी धन्यवाद तुंदा भी धन्यवाद। चलिए शो तो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच तुंदा बहुत बहुत स्वागत और भी श्रोता कॉल कर गुड़ दिन जरूर कनेक्ट कर ले। फिलहाल तुसो की मिल दिन थोड़ी देर और बाद और अपने जो हिंद रेडियो रे इन दे श्रोतागण तो आगाज कर लेंदन 14 मिनट बचेगी आगाज कोई नहीं आगाज कर लेंदन पहले कार्यक्रम रे श्रोताओं इस गीता सो की है ना और फिर आगाज तो बाद लेकिन चल रहे तू सब भी जो आगाज तो बाद हाँ भगवान राम जी रा भजन इं बलो सो जरूर असुखी असो कोशिश करनी है कि जरूर ए भजन के अंसो तिया जो है हुणान बहरहाल कार्यक्रम मन चल देन हूँ और नंदन तू सब भी प्यारे दिया गीत छो तो आगाज कर लेंदन कार्यक्रम दा इस गीता सोगे लेकिन इंदन वापस तू सोगे कई अन्य और जानकारी और सोगी सोगी और जितने भी श्रोता सोगे जुट रहे मिल रहे।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चल रही है। तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गया। अय्या जी अगली जानकारी तो हो गया है शेयर कर दे हिन। 10 और 20 रुपये रे प्लास्टिक रे नोट के ने श्रोताओं सो अगले साल के आ सो इची सकते हिन। 16 साल में तीजी कोशिश पर इस बार ज़्यादा उम्मीद भूने हाँ जी बिल्कुल। कुछ एक खास जानकारी के अंशतों सो है तो सो की कर लें शेयर। छिया मेडिकल कॉलेज में 320 सीटा बढ़नी हिन। राज्य सरकार विशेषज्ञ चिकित्सक बढ़ेंगे। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की आसो शुरू हो चुकी है जी बिल्कुल। शो देश में की सो पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करी थे मोदी सरकार है। 25 अगस्त तो शुरू हो चुकी मणिमहेश यात्रा। अगस्त तो ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाना है। शो तो रोजाना 5,000 श्रद्धालु जो मिलने हैं स्लॉट जी बिल्कुल। शो तो सब तैयार हिन ओब सो सब तैयार भुने हिन। कगो पवित्र श्री मणिमहेश यात्रा 2026 री तैयारी जो लेकर के है श्री मणिमहेश टूरिस्ट री माफ करे ट्रस्ट री बैठक उपयुक्त एवं ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश भी अध्यक्षता में किया सो भोई भरमौर में शो तुम बैठक रहा निर्णय लियो हा कि इस बार किया सो यात्रा 25 अगस्त 19 सितंबर तक किया सो आयोजित भूने हाँ। श्रद्धालु रे वास्ते 25 अगस्त किया सो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू भुचगाने हाँ। यात्री व्यवस्थे ऑनलाइन पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग 8 अगस्त 2026 थों की असो शुरू बुच गाना हाँ। शुरुआती चरण में प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालु व्यवस्थे की असो स्लॉट उपलब्ध रहने हैं। विशेष अवसरों पर संख्या बढ़ाई मतलब कुछ विशेष अवसर बोला तैड़ी संख्या किया सो बढ़ाई देने हाँ। शोतों यात्रा पंजीकरण शुल्क भी के असो 20 थों बढ़ाई करे 50 रुपये वह

अभी या सुगी कनेक्टेड है। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। आवाज़ नहीं चुंदे जनाब। हाँ जी कौन बोल लंदन और कड़ी था बोल लंदन। हेलो माफ करा जी तुंदे आवाज़ नहीं चुंदे जा रहा है व्यासु कॉल सो डिसकनेक्ट करना पड़ना। हाँ था चलिए कार्यक्रम जो होगा बढ़िंदे हिंसों और लेके चलते तू सब भी जो इस

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा कहना सो बिल्कुल चल रही तुम वेडियो सेट में चले जी फरमाइश और दौर के सो है बिल्कुल पूरा करू करते हिन और करना भी लग रहा इंदे अगले श्रोता असोगी कनेक्टेड हिन उस दिन कौन बोलूँ दिन नमस्ते जी हेलो हेलो ना जी तुम आवाज़ इन देती है कनेक्ट तो ना पूछ दे पर दस दे मुझे कौन बल्लूंदे और कड़ी तो बल्लूंदे तो है

आता आवाज नहीं सुनती ना जी। अच्छा जी, क्या फरमाइश है तुंदी? क्या फरमाइश है तुंदी जी? अच्छा ठीक है जी, जरूर होना लेना जी। जी जी जी जी जी धन्यवाद। चलिए श्रोतों, कार्यक्रम जो अह बढ़ाई लेंदे ना, मैं थोड़ा करी और हगूँ और इस गीत तरह फरमाइश किया सो कर लेंदन पूरे बने रहे आप जैसे।

0: जनाब ए प्यारे दे गीत हुए वेड़ी गुंजन धर्मशाला में हूँ हूँ एफएम बैंड 91.2 MHz पर। चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़न देन और अगले श्रोता होगी तू जो रूबरू कर बंदा हिंद शो तो इस समय तो है हूँ कर देन वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हाँ तू सुसोगे तो कार्यक्रम मंच इन द्रोता सोगे कनेक्ट बच्चू करते हैं और सोगे सोगे श्रोतों जानकारी रा पिटारे गे सो बया है तुस सोगे खोलो करते हैं तुंदे आगू किया सो रखू करते हैं। बहरहाल इन द्रोता सोगे कनेक्टेड हैं इन्यो कनेक्ट कर लेंदे पुछ दिन कौन बोलन देन और कड़ी थों बोलन देन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: मैं हेम सिंह बोल रहा हूँ जी, जिला मंडी से।
0: हाँ जी हेम सिंह जी।
1: हाँ जी, तो आपको कार्यक्रम सुनते हैं बराबर।
0: हेम सिंह जी बहुत अच्छी बड़ी अच्छी गल है और धन्यवाद। हेम सिंह जी मंडियाली में गल करते हैं ना मुझे मंडियाली हिंदी समझ।
1: मंडाली ऐसी भाषा है थोड़ी लग जाए ना जी, पहाड़ी भाषा है
0: हाँ जी।
1: ऐसे तुसा समझो नहीं आपने।
0: ना ना ना कमाल है ऐसा वहाँ ये नहीं समझ।
1: लोकल भाषा नहीं है नहीं तो समझ।
0: हाँ जी।
1: एक फरमाइश है आज की पहाड़ी की, तो सुनने आ लौट चले बलबीर ठाकुर लायक
0: परवीन
1: बलबीर ठाकुर।
0: बलवीर ठाकुर।
1: हाँ जी हाँ जी, पहली कैस्ट बनी थी हिमाचल में हमारे, जैसे अभी का जमाना था कैस्ट का, तो धर्मेंद्र शर्मा और बलबीर ठाकुर, तो ये पहली कैसेट बनी थी आ लौट चले इसका नाम। देख
0: अच्छा
1: गाना सुना दी बढ़िया जी अंदर।
0: ठीक है जनाब जरूर।
1: ठीक है जी।
0: ठीक है जी।
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद धन्यवाद। तो
1: नमस्कार।
0: श्रोतों ये हमीरपुर थो इंदे श्रोता के न सो जुड़ रहे थी है और कार्यक्रम जो फिलहाल आया है आगू बढ़ंदे न और अगली जानकारी होगी क्या सो अपने श्रोता जो रूबरू करवंदे हैं श्रोतों। हिमाचल प्रदेश है बर्फीले और दुर्गम क्षेत्र में क्या सो इस बारी सामान्य राज्य थो पहले किया सो दूजा चरण री जनगणना किया सो शुरू भुजगाने हाँ श्रोतों। कारण कारण है दस दे कोई बुझगानी तोड़े कि सितंबर थों पहले किया सो शिमला लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला में बर्फबारी थों पहले किया सो गणना शुरू बुझगानी हाँ। प्रदेश वे इन्या त्राई जिला में किया सो सर्दी रे दौरान अधिकांश स्थाना पर किया सो बर्फबारी बुंदे हाँ शोतों। ऐसे में इति में पहले जनगणना रा दौर किया सो शुरू करने रा फैसला किया आसो ले हाँ शोतों। तटीय क्षेत्रों ठेरे अलावा चंबा मंडी और सिरमौर रे उन इलाके जो भी किया सो दूए चरण में शामिल करी दिता जड़ी सर्दी किया सो भारी बर्फबारी रे कारण तड़ी भारी बर्फबारी रे कारण किया सो पुजना मुश्किल बुच गंदा हा और सर्दी किया सो भारी पेंदे हा है ना जी। ता ये बिल्कुल सही निर्णय है सही फैसला है सरकार रा और इस प्रकार री जानकारी के अनुसार है तो सुसोगी जरूर शेयर करते चलते हैं श्रोतों साझा करते चलते हैं। तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गए यहीं बने रहे अस हो गए अपना लगाव के असो बनाए रखा। चलिए फिलहाल कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं और इन श्रोता री फरमाइशा के अनुसो आई थिंक बुझेगी ने पूरी बलवीर ठाकुर री आवाज़ माँ किया सो होना चाहते ने गीत तो हूँ आईंदे नहीं और ये वाकई में कैस्ट बड़े पुराने कैस्ट है। चलिए फिलहाल तू सब भी अभी हुनंदे ने गीत बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गए हाँ बिल्कुल बने रहे श्रोताओं को जो कि अगले श्रोता सो भी कनेक्टेड हैं फिलहाल। नमस्ते जी।
2: हेलो नमस्ते भाई। हाँ
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ना।
2: जी सोना बोलेंगे गाड़ी। हाँ
0: अच्छा अच्छा जी
2: जी और खरन था। हाँ
0: बढ़िया जी सब ठीक ठाक राजी बाजी।
2: जी राजी राजी। लंका राजा सुनाएंगे।
0: कुंदने कुंदने जी
2: लंका राजा
0: अच्छा अच्छा
2: कोई
0: अच्छा
2: बाघ हो
0: अच्छा
2: जाए।
0: अच्छा ठीक
2: जी
0: है जी, सुमन
2: धन्यवाद।
0: जी जरूर होना ले। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए सो तो कार्यक्रम जो हो ब्रंदन तो सब बन रहे हैं समय, आरजे सचिन कपूर सो गए और पहले तो फरमाइश दौर के सो तो सो कर देन पूरा।

0: शतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और आऊँ तुंद अपना आर जे वेडी जो कि सचिन कपूर है तुंद सभी रे रेडियो सेट में बिल्कुल लाइव हाजिर अब छू रहा शतो ता बड़ा बड़ा स्वागत है मुके फिर सभी होने वाले रहा मोटा मोटा स्वागत है जनाब कर करे लुगरेन सब कुछ मानो सुने भी तैयारी अंदर बुने कार्यक्रम होने दे है ना और कुछ मनु कहने सब अपने अपने काम में कार्य के ना सो लोग रे भूने हिन बहरहाल कार्यक्रम में आऊँ सचिन कपूर होस्ट करूँ करदा कार्यक्रम रहना इंडी अपनी गप्पा हाँ श्रोता हूँ और बहुत सारे श्रोता के अनुसवास होगे तो है हेरो के अपने इस गाद्य कार्यक्रम होगे कि आ सो कनेक्ट बुंदे हिन श्रोता हूँ और अकी बच्चे भरमौरा था आज के सो इतनी अच्छी कविता क्या सो गद्दी मंच होना है यह तीनिया था गुजारिश करे कि सो कविता के सो वीडियो रे माध्यम तो इन देश व्हाट्सएप नंबर पर के सो ज़रूर पाइन ताकि यह तह वीडियो जो कि सो वायरल कराइन है ना और काफ़ी खुशी बंदे है कि अपनी कम्युनिटी रे मन हो गया ना अपनी गद्दी भाईचारा किया सो इस प्रकार हो गया आगू आगू बढ़ता रहे और नई नई चीज़ें क्या सो बुंदी रहन सतो बहरहाल कार्यक्रम जो है बढ़ंदन थोड़ा करे और हगू और लेकर चलते हैं सोता हूँ तू सब भी ऐसा जानकारी दी किनारी तो विशेष पोक्सो जी ये जानकारी बड़ी मतलब तो है घबराए भी सकते नहीं है जानकारी होने करे लेकिन इन दोता होगी कनेक्टेड हिन पूछ दिन कौन वालू कर दिन और कड़ी थो वालू कर दिन श्रोता क्या इस लाइव थो पहले तो है कभी सोच रहा था कि रेडियो मंच भी इतने सारे मनु आजकनी डेट में भी किया सो जुड़ी सकते हैं ना सोच रहा थो ना लेकिन हाँ ये सच्चाई या जुड़ी सकते हैं रेडियो गुंजन सो के जुड़ी सकते हैं और खासकर इस कार्यक्रम सो के कहना सो जुड़ते हैं श्रोतों इन दे अपने अपना गद्दी भाईचारा जुड़ता है इन दे अपने गद्दी मनु जुड़ते हैं बहरहाल अगले श्रोता भी जुड़ चुक रहे हैं नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बलून देन और कड़ी थो बलून देन अच्छा जी कंडी थो क्या ना जी तुंदा
1: मेरा नाम स्वीटी
0: है अच्छा स्वीटी जी कर कर लुगुरेन
1: बस कपड़े लगवे सीड़ा
0: अच्छा क्या बात है
1: और तुम दे प्रोग्राम लगवे होना
0: अच्छा जी
1: हां जी और ठीक नहीं भाई से
0: जी बिल्कुल ठीक नहीं स्वीटी जी तो है दसा कुछ नोई ताजी अपनी कंडी रे
1: नोई ताजी तो कुछ भी नहीं है बस
0: करे तो कुछ नोई ताजी बोने या ब्याकना कुछ कमाओ कि बस कपड़े सी है ना आज ठीक है इना तो नहीं मई आज तुंदी करखा
1: हां जी
0: मिलु माता श्री तो नहीं ना तुंदी आज
1: पता नहीं है उन्होंने शायद
0: ताई याद आया है ना
1: हां जी हां जी
0: अच्छा चल
1: एक कीर्तन हो ना कीर्तना होड़ो ना मैं गाला तो वे बड़े से अलग हो चल मैंने फरमाइश करी है ले
0: बिल्कुल बिल्कुल जी ये तुम अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम जो जी तो है कुछ कुछ झलकी के सो ठेरी तो है फेसबुक के माध्यम थो भी हेरी सकते हैं हुजुन दी तुसु हेरे न कदी
1: हाँ जी हाँ जी वो फेसबुक कर दो मैं
0: हाँ फेसबुक का तो है गुंजन धर्मशाला लिख लेता तती अंदर भी और वेडी गुंजन लिख लेता तती अंदर भी है आजकल वीडियोस के अंसो पाव करते हैं
1: अजी लाइव प्रोग्राम है रुआ में इतना ना
0: अच्छा
1: अजी
0: कितने लगो तू ता
1: ठीक लगो पति आवाज होना नहीं ना रेडियो अंदर
0: बस
1: मतलब आवाज जरा जरिए चेहरा मतलब थोड़ा अलग हुस दाम लगे फेस उसका जाने रुआ तालों पे पता
0: अच्छा अच्छा हाँ ये मैं ये क्या इमेजिन करूँ तो ये बड़ा ट्विस्ट है स्टोरी अंदर क्या इमेजिन क्या इमेज रखी थी तो है कि जहने रेडियो मंच मुंजो होने थी तो क्या लगता थू और जाना चेहरा है रिलू ता के लगू फिर
1: नहीं मेरे मन भी हो जी प्रोग्राम का बोलता की भैया हल्की मेरी फेसबुक पे जड़ी थोड़ा भी मतलब लगी कि भैया थोड़े एज दिन में मुन्ने मेरे वालों तो हुई है मतलब भाई आवाज सोने से लगती कि मतलब भी छोटे बच्चों की है मतलब हल्के सी मतलब 23-24 साल की मतलब पता नहीं एज कितनी होनी तुम दे
0: अच्छा एज क्या लगी तू सुरी करे
1: अब क्या बताए इतना आइडिया ना लगा सकती
0: ना ना दस

শত এফ এম ব্যান্ডে কি আরো সামলা দুই মেগা হার্টস পর ভেরি গুনছেন ধারমশালা তো হ্যাঁ সব বিয়ে টিউন কর রা আর হাউ তো সো গীতন দা আপনা আছে ভেরি জো কে সচিন কাপুর হ্যাঁ শত ফিলহাল তাবে বক্ত বুঝগো তুস সব বিথো ইজাজত লেনে রা শত তুস সব বিজো টাটা বাই বাই বলনে রা দুত ফেরি মুল দেন শত হর গন্দে গন্দে বসে বলনা চান ওকে মা বাপ রি সেবা জরুর কর জো कह जो कि तिन्या जो तुस वास्ते गुरु हा शो तो सो दुनिया में और कोई शख्स तुस वास्ते कर ही ना सकता। हर रिश्ते री अहमियत अपनी अपनी जगह शो तो दोस्त री अपनी जगह अहमियत परिवार वाले री अपनी जगह की सो अहमियत है ना, लेकिन जो माँ बाप ने सो तुंदे सब कुछ हैं, सो त्यारी सेवा हमेशा करा और भरपूर करा भरपूर करा श्रोता हूँ तुझे खुश रखा। अगर तुम्हारे माँ बाप ही तुझे खुश नहीं श्रोता हूँ तो है असफल हिन जिंदगी मन छे गल मेरी हमेशा याद रखे सा तय उम्र की असो याद रखे। बेशक तू सुले करोड़ों आ सो करोड़ों कसी कमा रहने है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुझे तो खुश नहीं ने अगर तुम्हारे माँ बाप तुझे सो गिना रहे हो करते हैं तो ये बोलना चाहूँ कि खुश रखा तीजा। और हम सचिन कपूर फिलहाल ले लेनो इजाजत हंसते रहे मुस्कुराते रहे और रेडियो गुंजन जो यहीं हुनते रहे और हुनंदे रहे। नमस्ते धर्मशाला।

सभी का इस खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं नाचीज सचिन कपूर, आइए लेके चलते हैं आप सभी को ताजा खबरों की ओर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, 6 मेडिकल कॉलेज में 320 सीटें बढ़ाएगी राज्य सरकार। 10 और 20 के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं। 25 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा। आइए अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। हरियाणा के जिद्दी से सोनीपत के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसने शून्य प्रदूषण काले हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन विकसित की है। ये धुएं या कार्बन की जगह केवल भाप और गर्म उत्सर्जित करती है श्रोताओं। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने पीजी मेडिकल सीटों के विस्तार का अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। सीटों को दुगना से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। श्रोतों, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर लगभग 597 के प्रस्ताव में रखी है करने का प्रस्ताव जो है वो रखा है। श्रोताओं, एक ही चरण में पीजी सीटों में 320 सीटों की बढ़ोतरी का ये पहला बड़ा विस्तार होगा। इससे प्रदेश के छात्रों को राज्य में ही जो है श्रोताओं वो चिकित्सा क्षेत्र हासिल करने के मौके मिलेंगे, साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी जो है वो दूर होगी। देश में अगले साल से प्लास्टिक के नोट चलने में आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, शुरुआत 10 और 20 रुपए के छोटे नोटों से होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वो बेंगलुरु इकाई से जो है वो श्रोताओं इस तरह की सूचना इस समय जो है वो दुनिया भर में आ रही है या अगले साल से हो सकता है 10 और 20 के नोट जो हैं वो आए। श्रोताओं, पवित्र श्री मणिमहेश यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर श्री मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक उपायुक्त एवं ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश की अध्यक्षता में जो है वह लघु सचिवालय भरमौर में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक जो है वो चलेगी, आयोजित होगी। जी बिल्कुल, हमारा फेसबुक के जरिए से सिग्नल थोड़ा सा वीक था, फिर से एक बार इस खबर को मैं दोहराना चाहता हूँ कि बैठक में निर्णय जो लिया गया है वो इस बार यात्रा जो है वो 25 अगस्त से 19 सितंबर तक आयोजित होगी। श्रद्धालुओं के लिए 25 अगस्त से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग 1 अगस्त 2026 से शुरू होंगे। श्रोताओं, शुरुआती चरण में प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। विशेष अवसरों पर संख्या बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल श्रोताओं, वैसे तो जो प्रतिदिन है वो 5,000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट जो है वो उपलब्ध रहेंगे, लेकिन अगर कोई विशेष अवसर है तो उस समय जो है वो संख्या बढ़ाई जा सकती है। यात्रा पंजीकरण शुल्क भी 20 से बढ़कर जो है वो 50 रुपये कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से कुकती परिक्रमा मार्ग पूरी तरह जो है वो बंद रहेगा। श्रोतों, हम बाखूबी जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बर्फीले और दुर्गम क्षेत्र में इस बार सामान्य राज्यों से पहले दूसरे चरण की जनगणना करवाई जाएगी। सितंबर से शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू ज़िला में बर्फबारी से पहले गणना शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, प्रदेश के इन तीन ज़िलों में सर्दियों के दौरान जो है वो अधिकांश स्थानों पर बर्फबारी होती है, ऐसे में इनमें पहले जनगणना का दौर शुरू हो जाएगा। श्रोताओं, वहीं इसके अलावा चंबा, मंडी और सिरमौर के उन इलाकों में भी दूसरा चरण जो है दूसरे चरण में भी शामिल इन्हें किया जाएगा। श्रोताओं, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पहुँचना जो है वो मुश्किल हो जाता है, पहुँचना जो है वो कठिन हो जाता है।
आइए इसी के साथ अगली जानकारी की ओर जो है वो बढ़ते हैं। श्रोतों, निवालिक से दुष्कर्म की दोष को 20 साल की सजा। जी बिल्कुल श्रोतों, अब तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। विशेष पॉक्सो न्यायालय धर्मशाला के निवालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रमेश चंद रिश्ते में नाबालिग पीड़ित का चाचा लगता था, जिसके बार बार दुष्कर्म करने से पीड़ित ने बच्चे को भी जन्म दिया था। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। राशि अदा ना करने पर 3 माह और 3 महीने जो है वो और अतिरिक्त कारावास भुगतान जो है वो करना होगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 251(2) के तहत 1 वर्ष के कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा जो है वो सुनाई है। दोनों सजाएं न्यायालय के आदेश अनुसार साथ साथ लागू होंगी। श्रोतों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला के न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने जो है ये फैसला सुनाया। श्रोतों, मामला में बताना चाहता हूँ, 9 अप्रैल 2025 को महिला थाना धर्मशाला में दर्ज FIR संख्या 07/2025 से संबंधित है। पुलिस ने आरोपी रमेश चंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 धारा 351(2) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने पीड़ित का चिकित्सा परीक्षण करवाने के साथ घटनास्थल से वैज्ञानिक संशय जो एविडेंस होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एकत्रित किए। श्रोतों, जांच के दौरान जो है वो उसके बाद जो है वो बिल्कुल एविडेंस इकट्ठा होने के बाद जो है वो अब आरोपी को जो है वो सज़ा मिलेगी, और इसी तरह से जो है वो सज़ा मिलनी भी चाहिए। श्रोतों, तो चलिए इसी के साथ ये समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

स्वागतम स्वागतम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, हमारी तरह तंदुरुस्त होंगे। नहीं, तंदुरुस्त तो पता नहीं हम हैं कि नहीं है इंटरनली, लेकिन हाँ, खुश रहना ज़रूरी है श्रोतों, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना तो, है ना। देखिए, कहते हैं ना कि आप पैसों से हर एक चीज़ खरीद तो सकते हैं, लेकिन पैसों से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। पैसों से आप अपना बचपन नहीं खरीद सकते। पैसों से आप अपनी जवानी नहीं खरीद सकते। हाँ, पैसों से आप बाकी सब कुछ खरीद सकते हैं। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। जैसे कि आप सभी बाखूबी जानते हैं कि गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको रूबरू करवाते हैं अनेकों जानकारियों के साथ। जानकारियों के साथ साथ आश्रोतों, हम आप तक जो है वो प्यारे प्यारे से गीत भी पहुंचाते हैं आपके वीडियो सेट के माध्यम से। आपके घरों तक हम प्यारे प्यारे गीत जो हैं वो भी पहुंचाते हैं। तो इस समय मैं बात करूं श्रोताओं धर्मशाला में कि क्या इस समय धर्मशाला का मौसम है श्रोताओं। देखिए, अब ये बरसात आ चुकी है और बरसात आप सभी बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार की रहती है, है ना। तो इस समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं, और नमी की बात करूं तो 58% जो है वो नमी है धर्मशाला में। आइए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में श्रोताओं लेके चलते हैं आप सभी को। आगाज़ करेंगे क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का रह रहा है। किस तरह का रह रहा है? कुछ इस प्रकार का रह रहा है। सुनिए जरा।

तो मौसम में मौसम तो वाकई में ही बेईमान है श्रोताओं। आज FM बैंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। फेसबुक के माध्यम से जितने भी श्रोता हमारे साथ इस समय बने हुए हैं जुड़े हुए हैं आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को अब गुड इवनिंग धर्मशाला के दूसरे पायदान पर यानी कि आज के विचार की ओर। श्रोताओं तो आज का विचार है हमारा रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं जनाब, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं जो इन्हें संभाल कर रखते हैं वह हमेशा प्यार पाते हैं, जो इन्हें संभाल कर रखते हैं वह हमेशा प्यार पाते हैं और जो इन्हें गिरा देते हैं वह अकेले रह जाते हैं। सच्चे रिश्ते कभी शर्तों पर या दिखावे पर जो है वो नहीं टिकते बल्कि आपसी विश्वास सम्मान और एक दूसरे को समझने की भावना पर जो है वो सच्चे रिश्ते टिकते हैं श्रोताओं। और वाकई में ही कुछ ऐसा है और मुझे तो लगता है साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो मुझे तो ये लगता है कि हर रिश्ते की ना अपनी अपनी एक सिचुएशन होती है, अपनी अपनी एक परिस्थितियां होती हैं और सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप में कितना एक्सपीरियंस है किस रिश्तों को लेकर, है ना। तो ये बहुत मैटर करता है श्रोताओं कि आप खुद आप में खुद कितना एक्सपीरियंस है ना। मेरा एक्सपीरियंस शायद मेरे पास है, आप जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमसे न जाने कितने तजुर्बे में बड़े होंगे, उम्र में बड़े होंगे, उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास है। तो हर रिश्ते की एक अलग कहानी है, एक अलग पहचान है, लेकिन हाँ ये बात तो सच्ची है कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं। अब सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो शो की सचिन कपूर। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोताओं की, आपके आने से घर में कितनी रौनक है। और वाकई में जब हमारे घर में कोई नया सदस्य हमारे बीच में आता है तो वो वाकई में ही एक अलग सा जो घर का माहौल होता है वो बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही प्यार भरा जो है वो हो जाता है श्रोतों, है ना जी। तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत हम सभी ने सुना श्रोतों। आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक जानकारियों के साथ अब आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले और दुर्गम क्षेत्र में इस बार सामान्य राज्यों से पहले दूसरे चरण की जनगणना करवाई जाएगी। सितंबर से शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला में बर्फबारी से पहले गणना शुरू की जाएगी। प्रदेश के इन तीन जिलों में सर्दियों के दौरान अधिकांश स्थानों में बर्फबारी होती है, ऐसे में इनमें पहले जनगणना का दौर शुरू होगा। वहीं इसके अलावा चंबा, मंडी और सिरमौर के उन इलाकों को भी दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पहुँचना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की जानकारियां जो है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे श्रोतों, बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ और आरजे सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को अब इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर आपके साथ बिल्कुल हाजिर हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। कुछ एक जानकारियों का पिटारा जो है वो हम आपके बीच रख रहे हैं श्रोतों। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ अपने श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। चलिए तो हम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फेसबुक के माध्यम से भी हम लाइव आते हैं और फेसबुक के माध्यम से भी हम कुछ एक जानकारियां जो है वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पवित्र श्री मणिमहेश यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर श्री मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक उपायुक्त एवं ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश की अध्यक्षता में सचिवालय भरमौर में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक जो है वो बिल्कुल चलेगी। श्रोताओं एक बार फिर से मैं डेट बताना चाहता हूँ, तारीख बताना चाहता हूँ, इस बार यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक जो है वो आयोजित होगी। श्रद्धालुओं के लिए 25 अगस्त से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग 1 अगस्त 2026 से शुरू होंगी। शुरुआती चरण में प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट उपलब्ध रहेगा। विशेष अवसरों पर संख्या बढ़ा दी जाएगी। श्रोताओं यात्रा पंजीकरण शुल्क भी 20 रुपये से बढ़कर अब 50 रुपये जो है वो कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से कुकती परिक्रमा मार्ग पूरी तरह जो है वो बंद रहेगा। जानकारियों का सिलसिला पिटारा यूं ही खुलता रहेगा रेडी गुंजन धर्मशाला में। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

जिए तो जिए कैसे बिना आपके, क्या बात है। कोई एक शख्स होता है ना जिसके बिना जीना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। वैसे जी तो सभी लेते हैं, लेकिन वो कमी जो है वो ज़रूर खलती है। वो एक एहसास जो है वो अधूरा ज़रूर रहता है श्रोताओं। तो बहुत प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना। इस गीत के बोल थे जिए तो जिए कैसे बिना आपके। और वाकई में ही हमारी लाइफ में भी, हमारी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसके बिना जीना जो है वो अधूरा सा लगता है। जी तो इंसान लेता ही है श्रोताओं, जी तो इंसान लेता ही है, लेकिन एक वो कमी सी जो है वो महसूस होती है, एक वो अधूरापन सा जो है वो लगता है। ज़िंदगी खाली खाली सी लगती है उस शख्स के बिना, उस इंसान के बिना। तो मैं सचिन कपूर हूँ, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। और आइए लेके चलते हैं श्रोताओं, अब आप सभी श्रोताओं को अगली जानकारी की ओर। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने पीजी मेडिकल सीटों के विस्तार का अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है श्रोताओं। सीटों को दोगुना से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 297 करने का प्रस्ताव जो है वो रखा है श्रोताओं। एक ही चरण में पीजी सीटों में 320 सीटों की बढ़ोतरी का ये पहला बड़ा विस्तार होगा श्रोताओं। इससे प्रदेश के छात्रों को राज्य में जो है वो ग्रेजुएशन चिकित्सा शिक्षा हासिल करने का मौका भी मिलेगा श्रोताओं, और साथ ही साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी जो है वो दूर होगी। जी बिल्कुल, तो इसी प्रकार से अन्य जानकारियां आपके साथ साझा भी होंगी। बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, आपके अपने होस्ट और दोस्त के साथ। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो है वो धूप और छिटपुट बारिश के बीच पिछली बात से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुई है, धर्मशाला और नगरोटा में तो मैंने खुद ही देखी है श्रोतों कि काफ़ी बारिश हुई है और मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य में 18 जुलाई से जो है यानी कि आज से जो है बता रहे थे कि मौसम में दोबारा पूरी रफ्तार जो है वो मानसून पकड़ लेगा, जो कि आज पूरा दिन से बारिश नहीं हुई थी। करीबन आई थिंक 3 बजे जो है वो बारिश योल के साइड जो है वो ज़रूर हुई है और आई थिंक ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 से 15 मिनट की ये बारिश रही है, फुहारे रही हैं, बूंदे रही हैं बारिश की। इस दौरान कई ज़िलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 19 से 22 जुलाई के बीच मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई ज़िलों के लिए जो है वो येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों, पर्यटकों और प्रशासन से विशेष सतर्कता बरतने की अपील जो है वो की है श्रोताओं। ऐसे में आने वाले पाँच दिन प्रदेश के लिए जो है वो मौसम की कड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 23 जुलाई तक यानी कि आज से 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। लगातार बारिश व संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रदेश में जो है श्रोताओं वो मंडी और कांगड़ा के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और कुल्लू, शिमला और सिरमौर में एक या दो स्थानों पर जो है वो मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 19 जुलाई को चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में एक दो स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह से हमीरपुर और सिरमौर में एक से स्थानों पर भारी बारिश और सोलन, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू के मध्यम से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है श्रोताओं। लाहौल स्पीति में भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी पूरी जानकारी 23 तारीख तक श्रोताओं। अब सुन रहे हैं सभी एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वीडी गुंजन धर्मशाला और लेके चलते हैं आप सभी को वीडी गुंजन धर्मशाला के बहुत प्यारे प्यारे से गीत हमारे पास हैं इन्हीं सभी गीतों की और

FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। नाबालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल। श्रोताओं, विशेष पोक्सो न्यायालय धर्मशाला ने नाबालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रमेश चंद रिश्ते में नाबालिका पीड़ित का चाचा लगता था, जिसके बार बार दुष्कर्म करने से पीड़ित ने बच्चे को भी जन्म दिया था। न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। राशि अदा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत 1 वर्ष के कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है। दोनों सजाएं न्यायालय के आदेश अनुसार साथ साथ लागू होंगी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने जो है ये फैसला सुनाया है। श्रोतों, तो आप सभी इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को लेके चलते हैं इस मुस्कुराहट की ओर।

0: शुतुर शाम के 7 बज चुके हैं और रेडी गुंजन धर्मशाला में अब वक्त हुआ है समाचारों का। बने रहिए, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के झुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे नेमा गागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: श्रोता एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए श्रोतों, अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से गीत को सुनने का और इस गीत के बाद अब आपके साथ हम आपको और ढेरों जानकारियों के साथ जो है वो रूबरू करवाएंगे जिस तरह से करवाते आ रहे हैं। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो, ये है वेड़ीगुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी बाखूबी सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर, फ्रिक्वेंसी 91.2 मेगा हर्ट्ज़ पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतो, 20 को पहला सावन सोमवार। जी बिल्कुल श्रोताओं, सोमवार को पहला सावन होगा और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड और नेपाल में सूर्य की स्थिति पर आधारित जो है श्रोताओं, इसके अनुसार श्रवण मास का शुभ आरंभ 16 जुलाई से हो चुका है। भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले इस माह को श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और मंत्र जाप के माध्यम से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रोतों, इस वर्ष का सावन मास का जो आगाज है वो समापन है 16 अगस्त को होगा। श्रोतों, राधा कृष्ण मंदिर के पंडित उमेश चंद्र नोटियाल ने बताया कि श्रवण संक्रांति के अनुसार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं का पहला सावन सोमवार 20 जुलाई को पड़ेगा, इसके बाद दूसरा 27 जुलाई को, तीसरा 3 अगस्त और चौथा व्रत 10 अगस्त को रखा जाएगा। इन चारों सोमवार को जो है वो विशेष पूजा अर्चना होगी और आप सभी भी जो है वो ज़रूर कर सकते हैं श्रोताओं, विशेष पूजा अर्चना, और किसी का दिल ना दुखाएं। बहरहाल लेते हैं कार्यक्रम में इस गीत का आनंद लेंगे इस प्यारे से गीत का। श्रोताओं, हम सभी ज़रूर आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ, और यूं ही बने रहिएगा, यूं ही जुड़े रहिएगा आपके अपने वेड़ी गुंजन के साथ, गूंज अपने बन के और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

शो तो बहुत ही प्यारा संगीत आप सभी ने सुना एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, श्रोताओं सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब आज के इस टॉपिक की ओर, कैसे करें मानसून में बच्चों की देखभाल, बहुत ज़रूरी है। मानसून का मौसम बहुत ही खुशहाल और दिल को छू लेने वाला होता है श्रोताओं। एक और जहां मानसून का सभी को इंतज़ार रहता है, वहीं यहां अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है श्रोताओं। गर्मियां हमारा खान पान से मन हटा देती हैं और गर्मियों में हमारा स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो जाता है। गर्मियों के बाद बरसात के मौसम में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां अधिक होती हैं। बड़े लोग तो मौसम के इस बदलाव को समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों को यह बात समझना बहुत मुश्किल होता है श्रोताओं। ऐसे में पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने बच्चों की देखभाल करें। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिन्हें आपको अपने बच्चों की खातिर मानसून में ज़रूर अपनाना है। आइए जानते क्या है ये टिप्स श्रोताओं। हाथ की सफाई सबसे पहली बात। मानसून में आप अपने बच्चों की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, खासकर हाथों की सफाई विशेष आवश्यक है। बच्चे अक्सर हाथ धोने की काम चोरी करते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि बच्चों के खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धुलाए जाएं। कपड़ों का चुनाव। मानसून के मौसम में ध्यान रखें कि नवजात और ख़ासकर 15 साल तक के बच्चों को हमेशा नर्म, साफ़, सूखे और सूती कपड़े पहनाने चाहिए। यदि उनके कपड़े किसी कारणवश गीले हो जाते हैं तो उनके कपड़े तुरंत ही बदल देने चाहिए और उन्हें हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए। बाहर ना खेलने दें। मानसून में भीगने का डर अधिक रहता है, इसलिए बच्चों को इन हाउस गेम्स खेलने को ही जो है श्रोताओं वो प्रेरित करें। अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। मानसून आने से पहले ही साफ़ सफाई की आदत बना लें। बच्चों को इस बारे में जानकारी दें कि इस मौसम में बाहर खेलने से उन्हें किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगली टिप श्रोताओं, ताज़ा खाना ही

कैसे पाते हैं कि हम लापरवाही करेंगे तब, कपड़ों का सही से चुनाव नहीं करेंगे तब, हाथों की सही से सफाई नहीं रखेंगे तब, बाहर खेलने जाने देंगे तब, ताज़ा खाना नहीं खिलाएंगे तब, और तब होंगी शुतुं। तो मॉनसून के सीज़न में सबसे अहम भी है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो पानी से होती है शुतुं, पीने के पानी से होती हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है जो जल्द बीमारियों की चपेट में आ जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि अपने फ्रिज की बोतलों को बदलने की आदत डालें और बच्चों को उबला हुआ पानी ही दें, बाहर का जूस या पानी ना पीने दें। तो बोतल बंद पानी या उबले हुए पानी को ही पीने की आदत डालें। इसी तरह से लेके चलते हैं आप सभी को और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

शुद्ध FM 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, अब वक्त हो गया है अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं,
1: थोड़ा थोड़ा करके

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अरे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो श्रोताओं, मानसून में किस तरह से बच्चों का देखभाल करें, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखें, वो कुछ एक टिप्स हमने आप तक साझा किए हैं। श्रोताओं की हाथों की सफाई रखें, कपड़ों का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए, बाहर ना खेलने दें, है ना, ताज़ा खाने ही खिलाएँ, उबाल कर पानी ही पिलाएँ, है ना, और रैशेस की समस्या इसके बारे में बता लेते हैं। श्रोताओं, इस मौसम में छोटे बच्चों को रैशेस होने की भी काफ़ी दिक्कत जो है वो होती है। श्रोताओं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे की नैपी गीली ना हो, रैशेस के साथ गीली नैपकिन से सर्दी जुकाम जो है वो होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। श्रोताओं, बारिश के बाद तुरंत बाहर ना निकले, बच्चों को बारिश के बाद बाहर निकालना काफ़ी पसंद होता है कुछ एक पेरेंट्स को, लेकिन कुछ एक को नहीं होता, और कुछ एक जो बच्चे हैं उनको भी बाहर निकलना जो है वो पसंद होता है बारिश के बाद। इस समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा खेलता खेलता जमा हुआ जो पानी है या झाड़ियों में ना चला जाए, है ना, क्योंकि ऐसे मौसम में मच्छर सबसे ज़्यादा फैलते हैं और ऐसा करने से बच्चों को कई बीमारियां होने का डर रहता है। शतों, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए अपने बच्चों को इस मौसम में होने वाले ख़तरों के बारे में जागरूक करें, उन्हें ये भी ज़रूर बताएं कि मानसून में अपना ध्यान कैसे रखें। तो श्रोताओं, अब से ठीक 2 मिनट बाद यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचार। कृपया विनय की प्रतीक्षा करें और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन की इसी ही गूंज के साथ।

0: एहतियात बरतने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित डेंटल कॉलेज का नाम राजीव गांधी डेंटल कॉलेज करने की घोषणा की है। शिमला में आज एओएमएसआई के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जिला अस्पतालों में भी उन्नत तकनीक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
1: हेल्थ में जब से हमारी सरकार आई है, हमने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने के दृष्टिकोण से आगे डेंटल हेल्थ के अलावा दूसरे जो हमारे डीएमडी है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके जो 75% पार्ट है उसमें हमने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, नियम चेंज किए हैं, रूल चेंज किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है और उस टेक्नोलॉजी को हमने लाया है जो एम्स में। पर कोई भी हेल्थ डेंटल हेल्थ के बगैर पूरी नहीं हो सकती है, तो डेंटल को भी मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी होती है।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विद्यार्थियों से प्रौद्योगिकी का उपयोग जनहित में करने और रोजगार प्रदाता के रूप में पहचान बनाने का आह्वान किया है। वे आज सोलन जिला के वाकनाघाट में निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने प्रदेश की समृद्ध औषधीय गुणवत्ता से युक्त जड़ी बूटियों और वनस्पतियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने पर भी बल दिया कि विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक इंजीनियर और पेशेवर को अपने कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। राज्यपाल ने अनुसंधानकर्ताओं व युवा नवोन्मेषकों से पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट चुनौतियों जैसे आपदा प्रबंधन, सतत कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक व अन्य शैक्षणिक पुरस्कार प्रदान किए। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। वे आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की चायली पंचायत और नगर निगम मजियाट क्षेत्र में करीब 16 करोड़ 70 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के अवसर पर बोल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चायली खुर्द सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे पीएमजीएसवाई चरण 4 के तहत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लोक निर्माण मंत्री ने टूटू रेलवे स्टेशन पर 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक वाहन पुल और 90 लाख रुपए से बनने वाली गड़ावक संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पुल के बनने से रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा प्रदेश को दी जा रही धनराशि का सदुपयोग नहीं कर रही है और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति न के बराबर है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं व केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार 90% तक की हिस्सेदारी दे रही है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार केंद्र को श्रेय नहीं दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान केवल केंद्र सरकार को कोसने की तरफ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीजी की हर सीट के बदले केंद्र हिमाचल को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस सहयोग का उल्लेख तक नहीं करती। जयराम ठाकुर ने जनता के सामने तथ्यों को रखने के बजाय केंद्र सरकार के योगदान को छिपाने के सुक्खू सरकार के प्रयास को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से मॉनसून के सक्रिय होने से चंबा व कांगड़ा जिलों सहित कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। हालांकि प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने आगामी 24 घंटों के दौरान किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि कल मंडी, कांगड़ा व शिमला जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: आज देर रात तो मौसम कंडीशन है काफी सक्रिय होंगे पूरे प्रदेश में। इसके चलते आज 18 जुलाई से देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 और 21 को जो इंटेंसिटी है वो प्रदेश में काफी रहेगी। इसके चलते में 20 और 21 को रेड अलर्ट जारी किया है। तो आज 18 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
0: इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कुल्लू, मंडी व सिरमौर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने इस दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। संसद में ध्वनिमत से पारित महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार से शिमला में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि 33% आरक्षण विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से संसद में पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अब इसमें परिसीमन का नया नियम फंसाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने में देरी कर रही है।
3: हमारा ज्ञापन जो है 33% महिला आरक्षण विधेयक को एज इट इज लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उनके राज्याध्यक्ष को ये ज्ञापन आज सौंपा है। जो विधेयक है ये 2023 में केंद्र की सरकार ने इसको पारित कर दिया है, लेकिन 3 वर्षों तक इस विधेयक को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे जो महिला संगठन है पूरे देश के वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आगामी जो मानसून सत्र है उस मानसून सत्र में जो है जो परिसीमन की और जनगणना की जो शर्त है उस शर्त को जो है इस विधेयक हटाया जाए और हटाने के बाद जो है इस विधेयक को एज इट इज जो है इसको लागू किया जाए।
0: सोलन जिला में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1970 से पहले जन्मे व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार शपथ पत्र और 2 गवाहों की आवश्यकता होती है।
4: सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज किया जा रहा है। पुराने बर्थ सर्टिफिकेट हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं उनको भी डिजिटलाइज करने का काम किया जा रहा है। पंचायत सेक्रेटरीज के पास रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड हमारे पास हैं, वो सारा रिकॉर्ड वो डिजिटल माध्यम से अपने आप अपलोड करते हैं। उसके बाद जो चीफ रजिस्ट्रार है, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर चीफ रजिस्ट्रार है, हम उसको उनका रिकॉर्ड देख के, उनका जो मैनुअल सर्टिफिकेट है उसको देख के उसको हम डिजिटलाइज करने की अनुमति देते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, रजिस्टर नहीं हुआ है पंचायत सेक्रेटरी के पास तो या म्यूनिसिपल कमेटी के पास या हॉस्पिटल जहां पैदा हुए वहां रजिस्टर नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको 1970 के बाद के जो पैदा हुए लोग हैं वो चीफ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से परमिशन लेंगे और जो 1970 से पहले पैदा हुए लोग हैं वो चीफ रजिस्ट्रार से परमिशन लेंगे।
0: नाहन शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान ने बताया कि अभियान के तहत सड़क किनारे पड़े मलबे और कूड़े के ढेर को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फेंकने और स्वच्छता अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया है।
5: नाहन शहर समय में सबसे स्वच्छ शहर हुआ करता था, लेकिन आज जो नाहन है पूरा गंदगी से भर रखा है, तो जिसके लिए मैंने नगर परिषद ने एक प्रयास किया है, हमने आज से शुरुआत किया इसकी कि एकदम साफ सुथरा शहर को किया जाए और कमेटी के माध्यम से ये सारा जो तंत्र है आज इसमें लगा है। हर वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, एनजीओ जो भी सोसाइटीज है काम करती है, मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि हम सभी मिलकर अपने इस छोटी सी नगरी को जो कि जगन्नाथ भगवान जी की एक नगरी है इसको हम स्वच्छ करें, इसको हम सुंदर बनाएं और हम सभी इसी के लिए प्रयास।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा डेंटल हेल्थ सेंटर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रौद्योगिकी का उपयोग जनहित में करने और रोजगार प्रदाता के रूप में पहचान बनाने का विद्यार्थियों से किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण क्षेत्र की चायली पंचायत व नगर निगम मजाट में 16 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, केंद्र द्वारा प्रदेश को दी जा रही धनराशि का सदुपयोग नहीं कर पा रही सुक्खू सरकार, केंद्र को कोसने पर पूरा ध्यान। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: श्रोतो एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जॉकी सचिन कपूर। तो श्रोतो, अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, और कहते हैं ना कि समय जो है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता, तो हमारे आपके लिए कैसे रुक सकता है। तो समय के अनुसार जो है वो बदलाव भी ज़रूरी है, और समय के अनुसार जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हो जाती है। सो हमेशा जो है वो समय की इज्जत कीजिए और समय के साथ चलिए, ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। फिलहाल मैं सचिन कपूर लेता हूँ आप सभी से अलविदा। पर्यावरण की जो है वो रक्षा कीजिए, बिल्कुल एनवायरनमेंट को सेफ रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, माँ बाप की सेवा कीजिए, हर किसी का भला कीजिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो

0: वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।
2: सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
5: बढ़िया।
4: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
6: कितना टाइम?
4: अरे पूरे 2 घंटे।
6: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
7: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
6: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
4: डॉक्टर।
7: डॉक्टर?
4: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
6: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
7: वो किसी को भी हो सकता है।
6: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
4: चलो
6: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अरे ले आओ यार नाश्ता।
8: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
9: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
8: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
4: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
8: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
9: अरे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
8: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। औरत की आंख बांस शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।
2: सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
5: बढ़िया,
4: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
6: कितना टाइम?
4: अरे पूरे 2 घंटे।
6: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
7: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
6: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
4: डॉक्टर?
7: डॉक्टर?
4: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
6: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
6: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
7: वो किसी को भी हो सकता है।
6: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
4: चलो,
6: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अरे ले आओ यार नाश्ता।
3: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
8: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
3: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
4: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
3: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
8: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
3: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
9: हाँ, आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो सो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

0: साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

भी हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो चिंतित थी, शर्माई।

जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।